एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:58 व 37 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं।

0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब इंसान के भीतर से अंतर मन से सांसारिक चीज़ों की चाह खत्म हो जाती है, तब उसका मन एकदम बेफिक्र और शांत हो जाता है। जिस व्यक्ति को अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, लालच ही नहीं, वही इस दुनिया में राजाओं का राजा यानी शहंशाह है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह।

इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो प्रभु का नाम ही है। जब इंसान कष्ट में होता है तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु को याद करने से ही कष्ट दूर हो सकते हैं। मन मजबूत होता है और उस कष्ट को सहने की ताकत आती है।

दोस्तों, अगर परमात्मा के लिए पुकार दिल से निकले तो सीधे उस परमेश्वर के दरबार में पहुंच जाती है। हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियां करता ही रहता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी कोई भूल ना हुई हो, लेकिन जब हमारी आत्मा अपना अहंकार छोड़ के परमात्मा के सामने घुटने टेक देती है और अपने अवगुणों को स्वीकार कर लेती है, तो विधाता भी सारे नियम भूलकर उसे गले से लगा लेता है।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर सुरेश वाडेकर और रंजना जोगलेकर के हैं। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर सुरेश वाडेकर और रंजना जोगलेकर के थे, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। श्रोताओं, आज विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अब आपको दे देते हैं कुछ अपडेट्स।

श्रोताओं, भारत आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत आ रहे हैं, जहां वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अहम बैठक में हिस्सा भी लेंगे। बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र देवघर में आज से प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। इससे शिव भक्तों में भारी उत्साह है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की।

आप सुन सकते हैं गीता संदेश शाम 6:20 पर। इसके तहत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक 37 से 40 की व्याख्या करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र।

तरह तरह के फूलों से सजाकर यानी कि गैर फिल्मी नगमे, गीत, कव्वालियां, भजन लेकर गुलदस्ता कार्यक्रम में हाजिर होंगे हम आपके लिए शाम 7:45 पर।

हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 7 बजे, प्रातः 8 बजे, दिन में 2:15 पर, रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र यानी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तीन उक्तम यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्श दातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 मृताः, 70+ श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी

0: इसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning 3 indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak and anti-submarine warfare shallow water craft Agra yesterday. Mr. Modi said India's journey from INS Vikrant to this date is not just about new warships but towards increasing self-reliance.
2: INS Vikrant se lekar aaj tak ki yatra keval naye yuddhapoton ki yatra nahi hai. Yeh Bharat ki बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: President Draupadi Murmu will visit Kuno National Park in Madhya Pradesh, Sherpur district today. During her visit, she will go on a safari in the park this morning and review the progress of the Cheetah Reintroduction Project. She will also interact with members of the Seheria tribe who work as Cheetah Mitras, Cheetah Trackers, local forest staff and tourist guides to learn about the experiences and role in the project. After the visit, the President will leave for Gwalior and later return to New Delhi. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious Cheetah Reintroduction Project in 2022 by releasing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park on his birthday. Later, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. India will host a 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the gathering, which brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. The meeting will focus on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today, with discussion centered on the rapidly evolving nature of national security threats and the role of new technologies in emerging security risks. Delegates will also examine cybersecurity, digital vulnerabilities, and artificial

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि

0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजे नगाड़ा।
5: यू मन कहां लगा लिया रे।
4: हमारे आज के कलाकार हैं साधुराम और साथी।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बाजे नगाड़ा में हमारे आज के कलाकार हैं साधुराम और साथी।

कार्यक्रम पाचाय नगाड़ा में अभी आप सुन रहे थे साधुराम और साथियों को। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ से

0: प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं ब्रिटनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला, वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
5: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
6: लिख के गया ऐसे करते वक्त लेखक का एक दर्जा मिल गया।
7: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
6: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
8: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रोटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम कैपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
11: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
10: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
11: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
10: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेकिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2026 अ ग्लोबल सेलिब्रेशन। द प्राइम मिनिस्टर सेड इट इज एनकरेजिंग टू सी योग ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अक्रॉस नेशंस इन द शेयर्ड परस्यूट ऑफ वेलनेस एंड गुड हेल्थ। He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। भाई उठ जाओ जल्दी से, अपनी अपनी आंखें मलो और लंबी सी सांस लेकर मुस्कुराओ, क्योंकि घड़ी की सुइयां रुकती नहीं है, चलती ही रहेंगी। और आपकी सुबह की चाय ना ठंडी नहीं होनी चाहिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र शशि बाला के साथ 101.4 MHz पर। मौसम तो बाहर ठीक सा है, गर्मी है तो गर्मी तो थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो मौसम ठीक ठाक सा तो है, पर कुछ लोग अभी भी चादर तान कर एसी चलाकर सो रहे हैं। भाई सूरज चाचा आसमान में आ गए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं और आपका अलार्म भी चिल्ला चिल्ला कर थक गया है। तो आप सबके लिए हमारे पास एक ही संदेश है, सुनना चाहेंगे क्या संदेश लेकर आए हैं हम?

दोस्तों, सुबह का वक्त वाकई बहुत जादुई सा होता है। एक नई शुरुआत, नए मौके और एक नया सा खास मौका कुछ कर दिखाने का। चाय की चुस्की ले लीजिए आराम से, अपनों को एक प्यारी सी स्माइल दीजिए, मुस्कान दीजिए और आज के दिन को कल से बेहतर बनाने का एक मिशन बना लीजिए और निकल पड़िए उस मिशन पर। और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या करना है, हमारे आसान से प्रश्न का उत्तर देना है। हमारा आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? आपको अपना उत्तर 8:45 तक टेक्स्ट मैसेज के जरिए दे देना है। हमारा फोन नंबर है 9466021336। तो जल्दी से हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपका नाम इसी कार्यक्रम में हम एक बार जरूर लेंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

और दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक ऐसे विषय पर जिसे हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी नियमों की, सड़क सुरक्षा नियमों की हम बात कर रहे हैं, जो हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, ये भी मानते हैं कि ये हमारी बेहतरी के लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अनदेखा कर देते हैं। हर रोज़ जब हम सुबह घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए या कॉलेज में जाने के लिए या अपनों से मिलने के लिए, लेकिन सोचिए ज़रूर कि आपकी वापसी का भी कोई इंतज़ार कर रहा होता है। सड़क पर होने वाला एक छोटा सा हादसा एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर सकता है। और सबसे बड़े दुख की बात पता क्या है, इनमें से 90% हादसे रोके जा सकते हैं अगर हम सिर्फ एक चीज का पालन करें, सड़क सुरक्षा के नियम। अक्सर हम सोचते हैं कि 2 मिनट की तो बात है, बिना हेलमेट के चले जाते हैं, आगे कोई पुलिस वाला तो है नहीं, रेड लाइट जंप कर लेते हैं, अरे बड़ी जरूरी कॉल है, गाड़ी चलाते चलाते ही बात कर लेता हूं। सच बताना दोस्तों, क्या वो 2 मिनट, वो एक फोन कॉल आपके इस अनमोल जीवन से भी ज्यादा कीमती थे? बिल्कुल नहीं। आज हम आपसे कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं मांगने वाले, बस छोटी छोटी सी बातें आपने याद रखनी है। हेलमेट जरूर पहनिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, आपकी सुरक्षा का सबसे पहला कवच यही है। स्पीड लिमिट जरूर ध्यान रखिए, कोई रेसिंग के मैदान में आप रेस नहीं लगा रहे हैं। दुर्घटना से देर भली आप जगह जगह लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी आप तेज गाड़ी दौड़ा देते हैं। भाई तेज रफ्तार रोमांच तो दे सकती है, लेकिन जिंदगी छीन भी सकती है। वादा कीजिए कि गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि फोन आ रहा है, कॉल देखना भी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है फोन आ रहा है और जरूरी हो सकता है, तो पहले गाड़ी साइड में लगाइए, फिर बात कीजिए। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए, ये कानूनन अपराध है। अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालिए। बस इतने से ही वादे हम आपसे मांगते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। इसी तरह से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र 101.4 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें और अपना प्यार अपनों के लिए बिखेरते रहें। हमसे ही नहीं, खुद से भी वादा कीजिए कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करेंगे, लेकिन पुलिस के डर से नहीं, ना ही किसी चालान से बचने के लिए। आप उस माँ के लिए ये वादा कीजिए जो दरवाजे पर खड़ी आपका इंतजार करती है। उस जीवन साथी के लिए हमें ये वादा कर दीजिए जो आप ही के साथ बुढ़ापे तक जीना चाहता है। आप उन बच्चों के लिए ये वादा कीजिए जिनके आप सुपर हीरो हैं।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, हप हप खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: ये सर्कस है।
1: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
2: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: साथियों, एक खूबसूरत और मजबूत इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी एक एक ईंट मजबूती से लगाई जाए। ठीक वैसे ही हमारा देश भी तभी आगे बढ़ सकता है जब समाज का हर वर्ग, हर समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की राह पर चले। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 पॉइंट्स या 15 सूत्र आखिर हैं कौन से, है क्या? वैसे तो हम गाय बगाए अपने कार्यक्रमों में इसकी जानकारी देते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। आसान शब्दों में अगर हम बताएं तो अल्पसंख्यक समुदायों तक शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना ही प्रधानमंत्री के ये जो 15 पॉइंट्स हैं, 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, शिक्षा के अवसर बढ़ाना। छोटे छोटे बच्चों के लिए ICDS सेवाओं को सुधारा जा रहा है, स्कूलों में उपलब्धता बढ़ाई जा रही है और सबसे जरूरी, मैट्रिक से पहले और बाद के लिए शानदार स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं ताकि पैसों की कमी से किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना छूट जाए। इसी के तहत दूसरा बड़ा हिस्सा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। इसके लिए गरीबों के लिए स्वरोजगार योजनाएं हैं, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में छोटे उद्योगों के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। तीसरा बड़ा चरण है रहने के लिए बेहतर सुविधाएं, यानी हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचे, हर बेघर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिले, इस तरह का प्रयत्न किया जा रहा है। चौथा पॉइंट है सुरक्षा, यानी सभी नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिले और देश के ताने बाने को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन असली फायदा तभी होता है जब हम और आप जागरूक हों। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है पर साधन नहीं है, या कोई युवा है जो अपना काम शुरू करना चाहता है और उसके पास धन नहीं है, तो उन्हें इन सरकारी योजनाओं के बारे में ज़रूर बताइए, सरकारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइए, लोन स्कीम्स के बारे में ज़रूर बताइए। इंटरनेट पर जाइए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट चेक कीजिए। जानकारी बांटना भी एक तरह से देश की सेवा ही है भाई।

साथियों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर राजाओं की तारीफें या सिर्फ तारीखें याद आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में सच्चे और निष्पक्ष इतिहास को लिखने की शुरुआत कहां से हुई थी? आज हम आपको ले चलेंगे 12वीं सदी के कश्मीर में, जहां एक महान लेखक ने भारतीय इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं महाकवि कल्हण और उनकी अमर रचना राज तरंगिणी की। यही हमारा आज का प्रश्न भी था कि प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है कल्हण। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई एक किताब है जिसका सीधा सा मतलब है राजाओं की नदी, यानी रिवर ऑफ किंग्स। इसमें महाकवि कल्हण ने शुरुआत से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के राजाओं का पूरा इतिहास दर्ज कर दिया है। लेकिन ये किताब सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये भारत के पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लिखते समय पक्षपात नहीं किया और खुद लिखा कि एक सच्चे इतिहासकार की वाणी को न्यायाधीश की तरह होना चाहिए, जो ना किसी के प्रभाव में आए और ना ही किसी की झूठी तारीफ करे।

श्रोताओ, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं, तो हमने सही उत्तर आपको बता दिया है। इसके लेखक हैं महाकवि कल्हण। तो सही उत्तर देने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं छत्तीसगढ़ से फणीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, हेयांश कुमार चंदन, सौंगा मदर मंगल रोड से, रावर कल्याण से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, गांव भाड़ा ब्राह्मणवाला नरवाना से मेघराज शर्मा, रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी, प्रबुद्ध मंडल फ्रेजर पूरा अमरावती से महेश रामटेके, ज्ञानेश्वर और निर्मला रामटेके, भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ भोला प्रवीण उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे सांगली से, लाडवा से चांद ठींगरा ईशू और एमी का सही जवाब है, गांव माइना रेणुका जी हिमाचल प्रदेश से पारस कुमार और अनुज कुमार, टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से, टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर स्वीटी, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, जोहान सैफी, लीबा मलिक और आबाद खान, हरियाणा से दारा पंडित, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम और सरिता गौतम, आदित्य जैन माहितपुर सिटी जिला उज्जैन से, मऊनाथ पंचन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और कार्तिक के साथ आर्यन वर्मा, अनुपमा कुसुम और अपूर्वा कासगंज उत्तर प्रदेश से, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी, वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, राजू बबीता और सुभाष दुर्गा कॉलोनी हांसी से, रायदूर से राजकुमार पुजारा, अनीता और साहिल पुजारा, वीरम गांव से अर्चना खुशी कौशल और इनके कुछ एक साथी हैं, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, सरिता गौतम, बीपी प्रकाश, कुश गौतम साईं विहार रामपुर से, तेलंगाना निजामाबाद से शेखल्ला बख्श, राजेश साबले पाटिल, गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और बीबी गरिमा बगड़िया। अगला सही जवाब हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, जयश्री सुनील बेंगलोर से, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा, राजेंद्र मलकीत आरती रानी और राघव गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से, आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अनवर, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल और पूजा परिहार, गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम सचिन योगेश और युद्धव कड़वासरा, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण गुजराती, जगदीश गुजराती और हीरेन भाई, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, डीर पाटन गुजरात से धीरज वीराबरी, रश्मि झरना राजकोट गुजरात से। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है, देखते हैं किस श्रोता ने, रायसन करनाल से रजनीश बत्रा, दीपक बत्रा और इनायत बत्रा ने हमें बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। अगला सही जवाब हमें किसने लिखकर भेजा है, जरा नाम देखें, नरेश भावना, अनिल खैल बाजार पारा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से, बिहार से सुधा शर्मा और अनामिका शर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगट प्रवीण शाहनवाज सरवराज अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट बुलंदशहर से, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव,
यवतलाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से, बिलराम गेट कासगंज से एम असलफ सैफी, नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम और आरिज वसीम, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से, किशनगंज बिहार से रविंदर मोहनदास, आशा भानुप्रिया, किशनगंज बिहार से ही सुमन और इनके साथी, अभिजीत ग्वानकर राही, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, गाड़गे नगर यवतलाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई और शैलेश लोखंडे, झिझिया ये जाने क्या इन्होंने लिखकर भेजा है, ठीक जवाब नहीं है इनका, एक बार फिर से देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ा गलत जवाब लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। सिद्धेश्वर नगर यवतलाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या का बिल्कुल सही जवाब। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से मास्टर अलिम, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का सही जवाब। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है गांव जाखोद से शंभुदयाल, विमला और योगेश, दीपक और पूजा ने। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी ने। सुदर्शन और पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश से। कार्टर रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशी, सुषमा और मायरा सुरोशे। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी और वालनिया सिंगरौल। पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे और इनके साथी। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। ग्राम पंचायत पटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला, परवीन, सुल्ताना, तबस्सुम और सुल्ताना। बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू। रतलाम एमपी से जगदीश ठाकर, नाइमा, रंजूबाई ठाकर, शिवराज और शिवांगी ठाकर। पानू कार्तिके, हर्षित पानू, गांव फुरलक करनाल से। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इरफान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से। सुनीता रत्नी, पृथ्वी सिंह सैनी, गांव वालसड़ा जाटान, कुरुक्षेत्र से। गांव गोंदर करनाल से किरणपाल बुम्बक, राममूर्ति और सरबजीत बुम्बक। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार, जगराओं से। आप सभी ने हमारा कार्यक्रम सुना और हमें सही जवाब भी लिखकर भेजे, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें जवाब लिखकर भेजते रहिए।

सही जवाब देने वाले श्रोताओं में दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू बबीता और सुभाष योगी भी हैं। रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा ने भी सही जवाब दिया। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े।

श्रोताओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में आपको अपनी त्वचा का ध्यान भी रखना है। डिहाइड्रेशन का त्वचा पर गहरा असर रहता है। अक्सर हमारी जो त्वचा है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, इसका मतलब है त्वचा के भीतर पानी की कमी हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा तेल का उत्पादन नहीं करती, प्राकृतिक रूप से सूखी हो जाती है। इसलिए त्वचा को डिहाइड्रेट रखने के लिए आपको दिन भर में पर्याप्त पानी पीना है। नारियल पानी भी पी सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट से भी आप अपनी त्वचा को डिहाइड्रेट रख सकते हैं। तेज धूप में याद रखिए बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, इससे पिगमेंटेशन का खतरा होता है और अगर जाना भी पड़े तो छाता साथ में रखिए या फिर सनस्क्रीन लगाकर निकलिए और हो सके तो सुबह सुबह जल्दी ही 8 बजे निकल जाइए घर से, फिर उसके बाद शाम को ही ध्यान रखिए कि आपको बाहर निकलना है। बार बार रासायनिक पदार्थों का प्रयोग अगर आप चेहरे पर करेंगे तो ये आपकी त्वचा की परत को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी से भरपूर फल लीजिए, तरबूज, खीरा, संतरा, इनमें एंटीऑक्सीडेंट

भरपूर होते हैं और तले भुने और प्रोसेस्ड खाने से ज़रूर बच कर रहिए क्योंकि ये सूजन बढ़ाते हैं। भरपूर नींद लीजिए ताकि आपको आराम मिले, आपके शरीर को आराम मिले, आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ महसूस करें।

0: आपके गौर शेर है,
1: तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चरा,
0: तेरी हर चाप से यानी हवा के झोंके से कुछ पत्ता हिलाया पर्दा हिल गया है, आठ आठ की चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्ज्वल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM।

0: पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: और आइए अब सुनते हैं चंदन दास को।

इसके साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध

0: पार्टी से रिले करेंगे।
1: में मैं ज्यादातर एक खलनायक की या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना अलेना, सिर्फ एक तू है लाख

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेस, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, अल्देना, सिर्फ एक तू है लाखों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।
3: FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसके तहत आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी ही पसंद का कोई गीत। तो फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर है 221-322, कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड 01744। तो मिलाइए हमें फोन, कीजिए हमसे बातचीत और सुनिए अपनी पसंद का कोई भी गीत। जब तक आप हमें फोन मिलाते हैं तब तक सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जिला जमुनानगर गांव गलोल से रुलदा राम बोल रहा।
0: कैसे हैं रुलदा राम जी?
1: ठीक है जी, बिल्कुल। ठंडा मौसम हो रहा।
0: ठंडा हो रहा है मौसम?
1: आएंगा, आज बादल चाल हो रही, ठंड हो रही, धूप नहीं है।
0: हाँ, धूप तो नहीं है लेकिन ठंड तो नहीं कहेंगे, मौसम सुहाना सा कह सकते हैं।
1: हाँ, मौसम बदल गया, थोड़ा ठंडा ही है, मौसम इतना गर्म नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए, गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: गीत तो सुनूंगा रफी साहब जी, आज मैं सुनना दो एक नाम लेने जी, मैंने एक तो ध्यान लेगा मांगा राम।
0: हाँ जी
1: सैनी
0: जी।
1: एक यहाँ का रणधीर वांगर
0: जी।
1: एक इंद्राज नादल से
0: जी।
1: दो तीन बंदे हैं सारे मेरी जेल कहिया है, सारे फरमाइश का है रफी साहब की आवाज में है जो।
0: कौन सा गीत?
1: तुझको पुकारे मेरा प्यार, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाहत में, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाहत में।
0: जी, आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मेरा नाम रवि कुमार किशन कुमार पांचल है जी। मैं एयरपोर्ट से बोल रहा मैम। मैं एयरपोर्ट
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: से बोल रहा हूँ, सहारनपुर जिले से जी।
0: महेशपुर गांव और सहारनपुर से आप बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: रवि कुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मिनल मजदूरी करता हूँ जी मैम।
0: जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बाजी माता रानी की भेंट सुनवा दें।
0: माता रानी की भेंट, कौन सी
1: चलो
0: सुनेंगे?
1: बुलावा है माता रानी ने बुलाया है।
0: जी, आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद की ये माता रानी की भेंट। फोन करने के
1: जी
0: लिए
1: नमस्ते
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं NDRI करनाल की। NDRI सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि भारत की श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन की रीढ़ की हड्डी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत साल 1923 में बेंगलुरु में एक इम्पीरियल इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी, लेकिन 1955 में इसे शिफ्ट किया गया करनाल हरियाणा में। आज जो भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक का देश है, इसमें इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिससे हमारे पशुपालक भाइयों और डेयरी इंडस्ट्री की जो तकदीर है वो ही पलट गई है। और भाई, इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि सुनते सुनते आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली क्लोन भैंस का बछड़ा, जिसका नाम प्रथम था, इसी NDRI की लैब में ही तैयार हुआ था। यही नहीं, हाल ही में इन्होंने गंगा नाम की भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन बच्चिया भी बनाई है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा बेजोड़ मेल कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। यहाँ सिर्फ दूध बढ़ाने पर ही रिसर्च नहीं होती बल्कि दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, पैकेजिंग और पशुओं की सेहत पर भी वर्ल्ड क्लास काम होता है। और अब देखते हैं कि कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम, मैं रमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है श्रीभूमि और आसाम से बोल रहा हूँ।
0: आसाम से? अरे भाई, बहुत दूर से बोल रहे। आसाम में मौसम कैसा है?
1: अभी मैडम आसाम बारिश चल रहा है।
0: बारिश चल रहा है और आसाम में, मतलब जहां आप रहते हैं, आपने अपने गांव का क्या नाम बताया?
1: मेरा गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है श्रीभूमि और श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट है। और हमारा आसाम सब ग्रुप फेज चल रहा है ना, एक बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली। मैं बराक वैली से फोन कर रहा हूँ।
0: क्या चल रहा है?
1: बराक वैली से बोलता हूँ। आसाम तो ग्रुप फेज है ना, एक बराक वैली और एक ब्रह्मपुत्र वैली। मैं बराक वैली से बोल रहा हूँ।
0: बारामूला से बोल रहे हैं?
1: बारामूली,
0: ये जगह का नाम हमने सुना नहीं है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है। वहाँ बताइए जहाँ आप रहते हैं उस जगह के बारे में कुछ खास बातें बताइए।
1: वो जो जो गांव है ना, गांव तो खेती बाड़ी मानस चल रहा है धूमधाम से, और विलेज है, और हमारा आसाम तो गोवा की जो नेचुरल
0: चलिए
1: आकाशवाणी में आज मैं पहला दिन जुड़ा हुआ। पहले मेरा नमस्कार शिकार करिए आप मैडम।
0: हाँ, नमस्ते आपको भी। अगर आपने पहली बार फोन लगाया है, पहली बार आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से रूबरू हो रहे हैं, तो हमारा भी प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, ये भी बताइए कि आप करते क्या हैं?
1: मैं पूजा पाठ करता हूँ, ब्राह्मण परिवार से, तो पूजा पाठ है मेरा पे।
0: अच्छा, चलिए, गाना कौन सा सुनेंगे
1: आज? मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है याराना। बहुत धन्यवाद
0: जी जी,
1: नंबर देने के लिए
0: जी, आपका धन्यवाद।
1: बाइकन मुंडा जी सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, और अमल भट्टाचार्य और रमेश पात्र जी। ठीक है, सबको लेकर सुनेंगे। आप अच्छा रहे, आपको नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो हेलो
1: हाँ जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, बेमेतरा।
0: धमतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े, धीमेतरा। ओके, धीमेतरा। हम इसे धमतरा ही समझते हैं, धमेतरा। हाँ
1: नहीं, वो एक धमतरी जिला पड़ता है, बेमेतरा से 150 किलोमीटर की दूरी पर है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: चलिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? धमेतरा। हाँ,
1: बेमेतरा।
0: धीमेतरा। अब
1: हाँ जी,
0: ठीक
1: हाँ जी,
0: है
1: हाँ जी,
0: जी। धीमेतरा से योगेश चांगड़ा जी, कौन
1: हाँ
0: सा गीत
1: जी।
0: सुनेंगे आज?
1: फिल्म है प्यासा सावन और गीत के बोल हैं मेघा रे मेघा रे।
0: जी, और नाम लेना चाहेंगे अपने दोस्तों के?
1: हाँ जी, कुछ मित्रों के नाम लेना चाहेंगे। श्रीपाल गोयल जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, जगदीश रायगर्ग जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, संजीव झा जी हैं, और गौतम जी हैं, बाहुबली।

0: फुले जी हैं और तमाम साथी, किसी का नाम छूट गया होगा तो
1: जी। बड़े अच्छे ढंग से आपने अपने दोस्तों के नाम लिए, तो आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: शुक्रिया।

0: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
1: 8708903436।
2: श्रोताओ, अब बात कर लेते हैं NIT कुरुक्षेत्र की। साल 1963 में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में ये शुरू हुआ था सफ़र। आज देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में इसकी गिनती होती है। लगभग 300 एकड़ में फैला हरा भरा कैंपस एक कॉलेज ही नहीं बल्कि छोटी सी एक दुनिया है। यहाँ कदम रखते ही पॉजिटिव वाइब्स, यूथफुल एनर्जी मिल जाती है। इस एनर्जी का, इन वाइब्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। देश के कोने कोने से आए बेहतरीन विद्यार्थी यहाँ एक साथ मिलकर नए भारत की तकदीर लिखते हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ाई और कोडिंग ही नहीं होती, जब बात आती है कॉलेज लाइफ को खुलकर जीने की तो यहाँ के विद्यार्थी खुलकर जिंदगी भी जीते हैं। और अब देखते हैं कि कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
2: इंद्रभान जी, कैसे हैं?
3: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ मैडम
2: जी।
3: और यहाँ बादल किया है और धूप भी किया है तेज, और बस गर्मी भी है, इस टाइप का मौसम चल रहा है मैडम
2: जी।
3: पानी कब गिरेगा कोई कहा भी जा सकता है, लेकिन मौसम पड़ा।
2: बिल्कुल सही। तो गीत बताइए कौन सा सुनेंगे?
3: आज मैं सुनूंगा मेरा फिल्म का नाम है चिराग, और गीत की बोले छाई बरखा बहार परे अंधेरा कुहार, गायिका लता मंगेशकर। और सबसे पहले गीत आपको निर्देशक साहब को, पूरे घर पर श्रोताओं को, आकाशवाणी पूरी क्षेत्र में जुड़े सभी घोषक भाई बहनों को, स्टार कर्मचारी को, श्रोताओं को, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं को डिटेल कर मैडम। अब इंतजार कर रहा हूँ अपने पसंद के गीत सुनने के लिए, फोन शामिल किए मैडम, धन्यवाद
2: जी। और आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुनते हैं
3: जी।
0: दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने-माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत, उस गज़ल को। आइए चलते हैं अगली गज़ल की ओर, जिसे गाया है इंद्रानी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं बेनी सतामकर।

0: हम सुन रहे थे नगमा जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
1: अहमद फराज की एक ताजा गजल पेश खिदमत है। ये गजल आपको जरा इस तचल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेर ने इसे संगीत

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

हम सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्टेक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश

0: डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।
3: ओ,

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आगे दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत

0: इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियां जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1, 2, 3, 4 कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि ना जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं, आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए, और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था, अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे उसे, शेर कहेंगे या कविता।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्नपत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $79 पर आ गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पश्चिमी एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर दिए जाने के बाद ये गिरावट आई। गनौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गनौर पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक सूचना के आधार पर आरोपी कोई गांव खुबड़ू के पास खेतों में घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। उसे उपचार के लिए खानपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गांव अटायल निवासी गोपाल हत्या के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। वह इसी वर्ष मार्च में पैरोल पर जेल से बाहर आया था लेकिन पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
0: अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गजल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गजल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई

बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज्यादा याद रह जाते हैं, क्योंकि वहां हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं। भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूँ एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियाँ तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते तमन्ना का खून हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है, और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं। तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियां ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है, और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है।

सिलसिला फिल्म का यकीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर की बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिव हरी यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हो, प्रेयसी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस, किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियां कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं, उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, जिंदगी में

बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस प्रेयसी पति पत्नी महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगली नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में, वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

0: एक बहुत सुंदर सा गीत हम अभी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियाँ हम तक पहुँचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से जिंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अजीज़ की गज़ल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफ़र, हाथ में गर्म चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियां हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियां हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और

आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर व शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँआरा का तलत जी तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम, और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मदहोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी दुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारवां गुजर गया और हम गुबार। क्या बात है, जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उसे जलते हैं, यूं जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या। ऐसी बातें हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेर व शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर्य वीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत सहरियार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं शाक पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, हर शाक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे को श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसर जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती है और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं। और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई जबरदस्त सी बड़ी जोरदार सी कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए, जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने

के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए, हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो जी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें पैती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने हैं, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

सुन रहे थे, गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आँखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो, प्रवीर हो जय जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदमी खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है, उसके बारे में जिक्र किया है। एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, तेरी गली ना छोड़ूं दुनिया में छोड़ दूं, और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर, ये कविता लिखती हैं और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, बस करो अब ये युद्ध बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब इसमें जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से, तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ, और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है, और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज़ में संतोष आनंद की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की, संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज़ उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरीला सफ़र आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप सबका जीवन मंगलमय, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए नमस्कार।

0: बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और

0: और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अच्छे मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है।
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज

0: योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हमने याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
1: सही बात
0: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
1: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है, जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
0: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लिखकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
1: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो। तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
0: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
4: पिछले भाग में आपने सुना,
5: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
6: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
7: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी।

0: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
1: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुध ली?
1: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसके पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति, वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
3: अम्मा ये देखता क्या हूं?
4: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
3: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
4: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
3: बहुत अच्छा होता।
2: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
3: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
2: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
1: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
3: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता, मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
1: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
2: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था। सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्यु देव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपास

0: उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
1: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
3: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
1: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
3: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
3: बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
2: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगले क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
3: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
2: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है, तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
3: हाँ, ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
2: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती है। तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
3: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है, ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था,
2: रूटीन ही नहीं था कहना
3: चाहिए, और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजे तो बच्चों का मन भी लगेगा।
3: बिल्कुल,
2: है ना। तो हम
3: वही देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
2: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण, इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
3: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
2: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराए नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं।
3: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
1: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
0: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको, तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें।

0: का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा न होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
1: उसी में,
0: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
1: और देखिए इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिये की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भुरकना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिए से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
0: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं, हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो बात तो करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से सभी को, मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते
1: जी। तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
2: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है, अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं बीएमआई जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है
1: जी।
2: कई नई अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक एमआरआई करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल सीटी स्कैन भी अवेलेबल है
1: जी।
2: अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे
1: जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
2: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
2: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की है।

0: एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल, फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की, फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, बनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में, पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है, लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस, वो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है.
0: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं. तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. मीन ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा.
0: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को.
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ.
0: जी जी, जी, जी.
1: थोड़ी बीट सुनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
0: क्या बात है,
1: मुझे पसंद है.
0: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोरायसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3-4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हफ्ते में 2 दिन, थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलत फहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया

0: Being a vegetarian is a risk factor for liver disease because vegetarians में हम ज़्यादा कर carbohydrates खाते हैं. अगर हमारी diet देखे 70-80% carbs है, 10% fat होगा, 10-15% protein है. और ये westernized diet देखो तो 30% तक protein होता है diet में. तो protein digest करना easy है. In fact हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा easy है digest करना than other forms of protein, जैसे अपने eggs हो गए, meats हो गए. हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम. इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं.
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें. इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें. और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब.
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है. और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं. अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी, हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वोमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, सोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है, खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो,

0: और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल आई, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी.
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
0: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक का कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
0: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: Correct.
0: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
0: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई, तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने का दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी,
1: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डालने, ये गलत है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है, वो थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है, जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
4: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ ली चुनरिया तेरे नाम।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और हमारी सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हमारा नियमित कार्यक्रम गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 37 से लेकर 40 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की।

किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम अन्नदाता प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:00। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान लेकर हम आएंगे शाम 7:30 पर और युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर। गैर फिल्मी रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं रात्रि 7:45 पर और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 8:00। पर अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम गाने नए पुराने और आपके भेजे हुए संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10:00 से। विविध भारती के कार्यक्रम आप इस प्रकार से सुन सकते हैं। हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती का रिले कार्यक्रम आपके लिए रात्रि 9:15 पर और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब सुनिए गुमशुदा संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 जून 2026 को लड़की भूमिका निवासी अरूप नगर गुमटी रोड कुरुक्षेत्र से घर से बगैर बताए कहीं पर चली गई हैं, जिनका हुलिया इस प्रकार से है, रंग गोरा, शरीर दुबला पतला, कॉफी कलर की टी शर्ट, जीन्स की पैंट व पैरों में सफेद रंग के जूते पहने हुए हैं। जिनके संबंध में अगर कोई भी सूचना अगर आपके पास है तो आप पुलिस चौकी हुड्डा शाहबाद से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम गाने नए पुराने।

सभी सुनने वालों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का जो ये कार्यक्रम है गाने नए पुराने में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की दोस्तों इस सुरमई महफिल में सुनेंगे सदाबहार पुराने और नए नगमों की जो मिठास है, नए गीतों की ताजगी होगी। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि संगीत एक किस्म का तिलिस्म है, यानी कि जादू, जो यादों को भी जगाता है और नए एहसासों को भी जन्म देता है। तो कुछ पल हर चिंता को पीछे छोड़कर सुरों की इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लेते हैं हम। और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ज्योतिष्मा। और शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ, जिसको हमने लिया है फिल्म कुर्बानी से। आवाज़ें हैं मनहर उदास, आनंद कुमार और कंचन की, और फिल्म है कुर्बानी। तो आइए सुनते हैं इस, और संगीत दिया है इस गीत का कल्याण जी आनंद जी ने, और गीत को लिखा है इंदिवर ने।

और आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म बधाई हो से। देव नेगी और हरजोत कौर की आवाजें हैं, वायु का लिखा हुआ गीत है और फिल्म का नाम है बधाई हो।

ये कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम से मुकेश की आवाज। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म कोई जाने ना का गीत, जिसमें आवाजें हैं सुमित्रा देवबर्मन की और गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर और जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है रोचक कोहली और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम में, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है वीर दुर्गादास, गीत को लिखा है भरत व्यास ने और संगीत है एस एन त्रिपाठी का।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ आशा इजाज़त चाहेंगे आपसे और उम्मीद करते हैं कि गाने नए पुराने जो आज को आपको इस कार्यक्रम में सुनवाए गए उन गीतों ने ज़रूर आपके मन को छुआ होगा और आपकी यादों को भी महकाया होगा। अपने सुझाव और प्यार हमें भेजिएगा ज़रूर और इजाज़त दीजिए अब इस कार्यक्रम से। सुरों की किसी नई महफिल में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अगला कार्यक्रम युववाणी, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और दोस्तों, आज कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का करते हैं हम हार्दिक स्वागत। कहा गया है कि शब्दों में दोस्तों वो शक्ति होती है जो दिलों को जोड़ सकती है, और एक बहुत ही खूबसूरत सा विचार कि संवाद ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है। और जो भी आप भावनाएं या जिस मकसद से इस कार्यक्रम को सुनते हैं उसमें हम कामयाब हों, इसकी हम पुरजोर कोशिश करते हैं। और आप सभी के लिए नए नए जो भी हम विचार लेकर आए या फिर जो भी हम प्रेरणादायक बातें रही या कुछ भी जो भी नया आसपास घटित हो रहा होता है, उस सभी से कोशिश करते हैं कि आपको वाकिफ कराया जाए, आपको उससे पहचान कराई जाए। लेकिन आज है सोमवार और आज आपको इंतज़ार रहता है आपके भेजे हुए उन गीतों को सुनने का जिन्हें आप सुनने के मंतज़र रहते हैं और आप अपनी ख्वाहिश लिख करके भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो आज देखते हैं किन किन श्रोताओं ने किन गीतों को चुना है आज के इस कार्यक्रम के लिए। गांव चौहता बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, अगले ख्वाहिशमंद श्रोता जिन्होंने कार्यक्रम सुनने के लिए अपनी

फरमाइश का गीत भेजा है वो है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकाश गवाणकर और टुक टुक अर्जुन है साथ में। गांव मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। अगली फरमाइश हमें नजर आ रही है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। अगला मैसेज जो है हमारे पास, अगली फरमाइश वो है दादरी गेट भिवानी के श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा की ओर से, और आप सभी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी और हेमलता की। अगर हम आपको हेमलता वाला वर्जन सुना रहे हैं और गीतकार है निदा फाजली, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
4: दोस्तों, आज एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका संतुलित उपयोग बहुत ज़रूरी है और हर दिन कुछ समय स्क्रीन से दूर रहकर परिवार से बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। कोई पुस्तक पढ़ें, संगीत सुनें या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताएं, इससे मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और तनाव कम होगा। याद रखिए, तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमारे समय पर अधिकार जमाने के लिए नहीं। और यदि हर समय हम इसकी दुनिया में मशगूल रहेंगे तो समय का सही उपयोग शायद हम भूल जाएंगे। तो सफलता और खुशियां दोनों आपके कदम तभी चूमेंगी जब ये जो गैजेट जिसका नाम मोबाइल है या इंटरनेट कहिए, कुछ भी कहिए इसको, जो कि आपको व्यस्त रखता है किन्हीं किन्हीं बातों में, कभी कभी तो वक्त कहाँ फुर हो जाता है, कहाँ पंख लगाकर गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आज है इस, आप हमारी सलाह का हम चाहेंगे कि ज़रूर पालन करें कि मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखें, ना कि उसके कंट्रोल में आप हो जाएं। और अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, तो देखिए कौन कौन से श्रोता हैं हमारे साथ। लाल माता सुदामा नगर, रतलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से हैं। हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी।

शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और साथ हैं रुद्र वर्मा। अगले मैसेज में हैं फुलगांव निज़ामाबाद तेलंगाना के श्रोता मोहम्मद वाहिद रुमानी, मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़सी, जुनैद ज़ुबैर, मुकरम, नुमान, फुरकान, जाकिर और फाजिल। और आप सभी की ख्वाहिश पर सुनते हैं फिल्म सड़क का गीत। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: महत्वपूर्ण है।
1: इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
2: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
1: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
2: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
2: 8708903436।
3: और दोस्तों, करियर की अगर हम आपसे बात करें तो केवल और केवल एक अच्छी नौकरी पाने का नाम ही करियर नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा, रुचि और मेहनत के साथ सही दिशा में उसका बढ़ना, ये शायद करियर कह सकते हैं आप। उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी करियर को पाने के लिए। और आज के समय में पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइन, पर्यटन, कृषि तकनीक और स्किल आधारित व्यवसायों में भी अनेक अवसर उपलब्ध हैं। सबसे ज़रूरी बात कि निरंतर सीखते रहना और अपने कौशल को समय के अनुसार विकसित करना, और असफलता से कभी नहीं घबराना बल्कि उसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। याद रखिए दोस्तों कि सफल वही होता है जो अपने सपने देखने के लिए के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए भी लगातार प्रयासरत रहता है। सही लक्ष्य, सकारात्मक सोच और नियमित मेहनत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है और आप जो चाहें वो बन सकते हैं। और अब कार्यक्रम में अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं, गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। अगला मैसेज है पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा की ओर से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है शिवाजी नगर वडाली देशमुख से हैं, वडली देशमुख, राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई और छकुली ताई खोबरखेड़े, खांडवी बुढ़ाना से दीपाली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े, थिलोरी दरियापुर से हैं सुनैना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे। अगला मैसेज है हमारे पास कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। अगली फरमाइश हमें मिली है कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा की ओर से। और गाँवगला जिला अम्बाला हरियाणा से है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। दुर्गा वरणी हांसी के श्रोता है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू। और आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म जावाज से, सपना मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

तो दोस्तों इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज इतना ही, और आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और संदेश ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपको कोई बात पसंद आई हो, अपने सुझाव और स्नेह ज़रूर भेजिएगा हमें। अनुमति दीजिए अब हमें, और होगी मुलाकात फिर किसी और कार्यक्रम में किसी और नए विशेष विषय के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रेली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गांव में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल में खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और पंचकूला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आर के सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती और श्यामलात भूमि देने का अधिकार जिला उपायुक्त को देने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से लगभग 13 पर निर्णय लिया गया है।
1: 13 एजेंडा क्लियर हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी है और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी भी है। उसके साथ साथ कई आइटम ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती लैंड शामला भूमि देने की बात थी, वो पहले डायरेक्टर को पावर थी, अब उसको पावर फ्रॉम डीसी साहब को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा का डायरेक्टर पंचायत पर जिस प्रकार से स्पीड बढ़नी चाहिए थी काम की नहीं बन पा रही थी।
0: बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने और गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा नए भर्ती 2600 पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि 18 माह से घटाकर 12 माह करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। सरकार का तर्क है कि लंबे प्रशिक्षण के कारण बड़ी संख्या में चयनित पटवारी गांवों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि कम होने से राजस्व रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और भूमि संबंधी सेवाओं के लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई। करीब 550 एकड़ क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को बीज आदि की खरीद के लिए होने वाले खर्च से निपटने में राहत दी है और छोटे मोटे कृषि कर्जों के लिए कर्ज लेने से बचाया है। सबसे खास बात यह है कि ये राशि किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी सिफारिश के सीधे पहुंच रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 15,95,644 लाभार्थी किसानों के खातों में 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि पहुंची है। जींद के एक किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
2: ये जो मोदी साहब ने जो अपने स्कीम चलाई है किसानों के सम्मान के लिए, तो बहुत अच्छी स्कीम है। जिस टाइम ये किस्त आती है तकरीबन ये महीने ऐसे हैं जिनमें जमींदारी ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ तो सहारा लगता है आदमी को, खाद बीज कुछ तो ले आता है और ये किस्त बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। अब 23वीं किस्त मेरी ये परसों शाम को टाइम टू टाइम मैसेज आया, मैंने टाइम को सोने के वक्त 9 बजे चेक है, उससे पहले आ चुकी थी किस्त। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, उनका दिल से धन्यवाद।
0: हरियाणा के किसानों को अब तक कुल 23 किस्तों में 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी

0: साइट news.aiir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर लगभग 55,49,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस बजट से केंद्र में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे धीराणा और आसपास के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचकुला नगर निगम के 79,46,00,000 रुपए के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज 3 दिन का रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया, जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने इस दौरान रिमांड अवधि में हुई पूछताछ और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत करवाया। गौरतलब है कि आरके सिंह पर पंचकुला नगर निगम से जुड़े कथित गबन मामले में भूमिका निभाने का आरोप है। सीबीआई इस मामले में वित्तीय लेन देन, प्रशासनिक निर्णयों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच कर रही है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नूह में खेल विभाग में तैनात उप अधीक्षक राम मेहर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी कार जिला खेल विभाग में ठेकेदार के माध्यम से मासिक किराए पर लगी थी, किंतु उसे इस वर्ष फरवरी से वाहन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और खेल अधिकारी द्वारा उसके वाहन को 1 जून से विभागीय सेवा से भी हटा दिया गया। उसके बाद खेल विभाग के कुछ कर्मचारी उसकी गाड़ी को पुनः विभाग में लगाने के बदले 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को न्यायालय में भेजकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी उद्योगों में पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल से ग्लोबल तक की परिकल्पना को ध्यान में रखकर बुनी गई खादी आज देश की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण समृद्धि का बड़ा आधार बन गई है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बलप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार ने इन 12 वर्षों में खादी व ग्रामोद्योग पर विशेष ध्यान दिया है।
1: 12 वर्षों में खादी पे एक खास फोकस किया गया है ताकि हम मेक इन इंडिया के स्लोगन को एक रियल सेंस में अपना सके, तो उसी के उपलक्ष्य में कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें से फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेके मार्केटिंग असिस्टेंस तक का कवरेज किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो हमारी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके अंडर हमारी विलेज इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
0: लोगों को जहां अनुदान पर ऋण उपलब्ध हुआ, वहीं डिजिटल मार्केटिंग द्वारा नया बाजार उपलब्ध हो रहा है। कनौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गनार पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक हत्या के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा गोपाल इसी वर्ष मार्च में मिली पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया था। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 व 5 जुलाई को ली जाने वाली एचकेट परीक्षा 2025 हेतु पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने विवरणों में रह गई कोई भी त्रुटि ऑफलाइन माध्यम से दूर करवा सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल दोपड़ ने बताया कि यह सुविधा 25 जून तक केवल कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय के कमरा नंबर 28 में मिलेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गाँवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल में खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धीराणा में नया उप

0: केंद्र खोलने की मंजूरी दी और पंचकूला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आरके सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 37 से लेकर 40 तक की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की।
2: श्रोताओं नमस्कार, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद् गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 37 से आगे के श्लोकों की व्याख्या। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति क्वचिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमि वनस्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते। योगच्युत का अभिप्राय यह है कि जो जीवात्मा योग से च्युत हो जाता है, यानी योग की सिद्धि को प्राप्त करते करते रह जाता है, अंतिम लक्ष्य के पहुंचने के पहले वह उस लक्ष्य की प्राप्ति से विमुख हो जाता है, उसे हम योगच्युत कहते हैं, योग भ्रष्ट कहते हैं। अर्जुन भगवान से कहता है कि ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ होने के कारण आशय रहित पुरुष कहीं दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को आप ही पूरी तरह से छेदन करने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके सिवाय इस संशय का छेदन करने वाला कोई दूसरा उपयुक्त पात्र नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुना कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। यह भी उसने जाना कि संयमी जो उपाय जानकर यत्न करता है और जो वश्यात्मना होता है, जो संयतात्मना होता है, वह योग की इस उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पर उसके मन में प्रश्न उठता है कि कोई योग साधना में निरंतर नहीं लगा रह सकता है। ऐसी दशा में स्वाभाविक ही वह योग के लक्ष्य से च्युत हो जाएगा, किंतु उसकी श्रद्धा उस मार्ग पर बनी हुई है। ऐसा प्रयत्न छोड़ देने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? अभिप्राय यह है कि योग के प्रति उस जीवात्मा की पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है, योग की विद्या का आदर करता है, योग को मानता है, किंतु उस क्रिया में वह निरंतर नहीं लगा रहता है। ऐसे जीवात्मा की कौन सी गति होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतो नष्टः उतो भ्रष्टः वाली कहावत उस पर चरितार्थ होती है, अर्थात इधर नष्ट और उधर भी भ्रष्ट हो गया, यानी दोनों तरफ से चला गया। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो जाने के कारण जो भटक गया है वह ना तो योग मार्ग का राही रहा और ना दुनिया का बनकर रहा। कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का। संसार छोड़कर योग का रास्ता पकड़ा था, अब योग का पथ त्याग कर संसार और माया दोनों से विमुख हो गया। अगर योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था, पर अब उसका क्या होगा? यह अर्जुन का प्रश्न है। उसका यह संदेह बहुत सही है। योग का रास्ता बहुत सरल नहीं है। वह अपने संदेह की निवृत्ति भगवान श्री कृष्ण से चाहता है। उसका पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण पूरी तरह से उसके संशय को मिटाने में समर्थ हैं। अर्जुन का विश्वास है कि यदि संसार में सर्वश्रेष्ठ समाधान इन संशयों का कोई दे सकता है तो वह भगवान वासुदेव ही दे सकते हैं। और यह भी विश्वास है कि कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति उसके इस संशय को मिटाने में समर्थ नहीं है। अर्जुन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका श्री कृष्ण के प्रति विश्वास है। विश्वासः फलदायकः भवति। कहा जाता है कि विश्वास हमेशा फल को प्रदान करने वाला होता है। साधना में विश्वास सिद्धि का परम साधक होता है।

0: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं,
1: पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिन्तात गच्छति।
0: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे भाई, कल्याण करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। अर्जुन जितनी स्पष्टता से उत्तर की अपेक्षा करता रहा होगा, भगवान वैसा ही उत्तर प्रदान करते हैं। उनके उत्तर में कहीं भी कोई संदेह नहीं है। अर्जुन को लगा था कि योग साधना में यदि कोई यथोचित संयम के अभाव में न टिक पाया तो उसके लोक परलोक दोनों कहीं नष्ट न हो जाए। भगवान कहते हैं कि नहीं, उसका कहीं विनाश नहीं हो सकता है। भगवान अर्जुन को पहले भी बता चुके हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस धर्म अर्थात योग निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। यानी किंचित भी धर्म का आचरण बड़े बड़े से भयानक भयानक समस्याओं से जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ होते हैं। भगवान ने यहाँ पर कल्याणकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो योग साधना में लगा हुआ है उसे क्या कल्याण करने वाला कहा जा सकता है? वह तो अपने ही कल्याण में लगा है। यदि अपने ही कल्याण में लगा है तो फिर खुद का कल्याणकृत कैसे हो सकता है? तो क्या यहाँ पर आत्मकल्याण अर्थ विवक्षित है? इसका उत्तर है, जो अपने कल्याण में लगा है वह प्रकारांतर से समाज का भी कल्याण करता है। वेदों में भी कहा गया है, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। योग साधना में लगा हुआ पुरुष दुराचारी नहीं होता है, वह दूसरों के लिए संताप का कारण नहीं होता है, वह राग दोष से स्वयं को मुक्त करने की चेष्टा करता है। अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा व्यक्ति योग की चरम सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है अर्जुन का कि जो योग के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य की प्राप्ति के किंचित पूर्व ही अवरुद्ध हो जाता है उसका मार्ग, यानी वो भटक जाता है, तो किस सिद्धि को प्राप्त करता है? प्रश्न से ये ध्वनित होता है कि अर्जुन उसकी मृत्यु परांत गति के संबंध में ही पूछ रहा है। मरने के पश्चात उसकी किसी प्रकार की दुर्गति तो नहीं होती। और भगवान का उत्तर भी अर्जुन के इस आशय को पुष्ट करता है। वो कहते हैं कि इस लोक या परलोक में उसका कहीं विनाश नहीं है, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती है। और भगवान का उत्तर भी अर्जुन के इस आशय को पुष्ट करता है। वो कहते हैं कि श्लोक या परलोक में उसका कहीं विनाश नहीं है, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती है। आचार्य शंकर के अनुसार, नाशो नाम पूर्वस्मात् हीनजन्य प्राप्ति ही। अर्थात नाश का अर्थ होता है कि पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति। सो योग भ्रष्ट व्यक्ति की ऐसी अवस्था नहीं होती है, जहां भी उसका जन्म होता है पहले की अपेक्षा उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती है। यहाँ पर भगवान की घोषणा ध्यान देने योग्य है, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात हे तात, कल्याण करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। कैसी विलक्षण आश्वासन वाणी है भगवान वासुदेव की। यह शुभ कर्मियों के लिए प्रेरणा का अजस्र स्रोत है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को तात कहकर पुकारते हैं। तात शब्द पिता पुत्र शिष्य जहां भी घनिष्ठ स्नेह संबंध होता है वहां पर प्रयुक्त होता है। इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का असीम स्नेह प्रकट होता है। प्रस्तुत श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य तात्कालिक लाभ हानि को त्याग कर सदा धर्म सदाचार युक्त मार्ग का अनुसरण करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि कहा गया है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात प्राणी मात्र में जो जो कर्म करता है प्राणी मात्र, वह उसके फल को अवश्य प्राप्त करता है। अतः सभी मनुष्यों को धर्मयुक्त कार्य में ही प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि कुत्सित कर्मों में प्रवृत्ति जीवात्मा को नरक की यातना के लिए विवश कर देती है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 37 से 40 तक की व्याख्या सुनी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीता संदेश, प्रस्तुति थी डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

0: कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बन भाइया ने चतुरु भाई की ओरत है और
1: मंजीत भाई की ओरत है
0: सब ने राम राम। मंजीत भाई, कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे सबसे पहले खेत बचाओ अभियान के बारे में, क्योंकि भाई इस समय हम देख रहे हैं कि जो खेत बचाओ कार्यक्रम है उसमें हम अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा हम उर्वरकों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है मंजीत भाई।
1: हाँ जी,
0: और जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनका प्रयोग भी हमने कम करना है, और जो वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो ये अभियान है वो 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। हर गांव के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं भी आप जहां जहां भी देखोगे तो मंजीत भाई आप गांव के अंदर रैलियां हो रही हैं भाई, खेत बचाओ अभियान को हमने बचाना, खेत बचाना जो है बहुत जरूरी हो गया। और इसके साथ साथ मिट्टी परीक्षण है, जो मिट्टी की जांच हम करवाए हैं, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, और संतुलित पोषक प्रबंधन यानी कि न्यूनी के हमने देख हम देख जो है पड़ोसियों की देख हम देख, और हमने जो रासायनिक खाद हैं उनका हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कम से कम हमने इस्तेमाल करना है, करना जरूर है, ये नहीं कि भाई हमने खाद का इस्तेमाल नहीं करना। मंजीत भाई,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और इसके साथ साथ हम जो पानी बचाओ अभियान है, प्राकृतिक खेती के ऊपर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं और पानी बचाने के ऊपर भी जोर दे रहे हैं, और जो बीज हैं उन्नत किस्म के जो बीज हैं, क्योंकि मंजीत भाई कई बार हम देखे हैं कि जो पुराना बीज हम ले हुए हैं तो उससे हमने नुकसान हो जाए, अब नुकसान क्यों हो जाए, कई बार उसमें जो ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाए हैं कि जो काबू में आनी मुश्किल हो जाए। इसके अलावा हम अगर बात करें मंजीत भाई
1: बीज उपचार की,
0: हाँ,
1: हरी खाद की और आधुनिक बुआई तकनीक, मतलब आजकल जो बुआई सिस्टम चल रहा है उसकी, और जल संरक्षण की, भाई पानी तो हमने बचाना है, हमने कम से कम पानी का प्रयोग करना और खेती बढ़िया तो बढ़िया बनानी है, और इसे आधार पर हमने इस पद्धतियों को हमने आगे से आगे बढ़ाना है।
0: और मंजीत भाई एक और भी बात है, इस अभियान में जो कई बार नकली उर्वरक भी मिल जाए हैं, नकली बीज भी मिल जाए हैं, कीटनाशक जो नकली हैं, यानी कि किसान जो है अन्नदाता अपने तरफ से निश्चिंत हो जाए, हमने तो भाई दवाई भी छिड़क दी, बीज भी बढ़िया ले लिया, और भाई उर्वरकों का भी चुनाव बढ़िया कर लिया, खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा के, और उस आधार पर हमने तो भाई अपना सारा वो कर रखा है। लेकिन बात जब आवा है जब उस खेत में कुछ भी नहीं ठहंदा,
1: कुछ भी नहीं ठहंदा जी हाँ,
0: तो इस तरह से हमने जो और भी कई योजनाएं हैं

0: फ़ोन से जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे उनसे आप बातचीत कर सके हैं। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की बातचीत। और अब मंजीत भाई,
1: हाँ जी,
0: कुछ
1: मनोरंजन
0: की तरफ मेरा इशारा है।
1: हाँ हाँ।
0: तो मनोरंजन भैया का करवाएंगे एक रागनी के गैल, और रागनी जो है वो वेद प्रकाश अलुपुरिया और साथियों की आवाज में। तो आइए सुने रागनी।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर सुनो जी, हाँ जी।

0: तो मनजीत भाई,
1: हाँ जी,
0: रागनी आपने सुनी?
1: हाँ जी, जी।
0: और भैया ने भी सुनी जो कार्यक्रम सुन रहे हैं। और अब अगर हम बातचीत करें अपने जो कार्यक्रम में आगे की, भाई देखो, खेत क्यार में जो उपकरण है, इब उपकरण, उपकरण मतलब जो खेत में हम अपने फाड़ी है, कसोला है, कस्सी है, ये तो हो गए हाथ से चलाने के, लेकिन यांत्रिक जो मशीनरी है उसका हमारे खेत के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
1: महत्व, हाँ जी,
0: हम जाने हैं कि भाई ट्रैक्टर के बिना तो देखो काम
1: बनता नहीं। हाँ जी,
0: और इसके साथ साथ भाई जो दूसरी मशीनें हैं जो खेत ने एक सरिया करे, लैंड लेजर जो लेवल मशीन है वह भी है, और बुआई की मशीन है, कटाई की भी मशीन है, गहाई की भी मशीन है। तो ये मशीनें जो हैं, ये उपकरण जो हैं, जो के खेत में हम काम तो जब ले ले हैं, लेकिन फिर भी वहाँ हमने इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये यंत्र जो हैं, ये मनजीत भाई कोई सस्ते नहीं आंदे,
1: बहुत महंगे हैं। जी हाँ,
0: महंगे हैं,
1: और गरीब किसान तो इन्हें मुश्किल ले।
0: हाँ, जिस दौर भाई ब्योत अच्छा है उसने तो, खैर जिसके द्वारा ब्योत भी अच्छा हो ना, तो उसने भी इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाए। अब बात आ है कि जो कृषि यंत्र हैं, जो मशीनरी हैं, उनकी देखभाल में जो हम बात करें कि भाई जिस तरह से हर दिन हम खेत में जब काम करें हैं तो माटी लाग जाए। आजकल आप देख रहे हो कि जो धान की फसल के लिए हम खेत न जब तैयार कर रहे हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और उसमें हम कद्दू कर रहे हैं जब,
1: हाँ जी,
0: तो ट्रैक्टर चल रहा है,
1: हाँ जी,
0: और मशीन भी चल रहा है,
1: हाँ
0: जो जब ट्रैक्टर सांझ न जब उसने ले काम है, तो उसकी जो मट्टी है, जो गारा है,
1: हाँ जी,
0: उसको हमने धो देना चाहिए, यानी कि तार देना चाहिए, क्योंकि जहां मिट्टी लगी रह जाएगी वहां उस पुर्जे के ऊपर जंग लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए मिट्टी भी उतारनी जरूरी है।
1: मिट्टी भी उतारनी जरूरी है, और हमने इसका मतलब ट्रैक्टर भी जर लाग के खराब होने का डर रहता है अपनी मशीनरी को, इसलिए हमने उसका माटी को उतार देना चाहिए। और कृषि यंत्रों में लगे जो स्प्रिंग है और बुश है, उनका भी हमने बार बार चेक कर लेना चाहिए। ग्रीस और तेल भी हमने चेक कर लेना चाहिए, इनमें कोई बाहर की आवाज़ ना आए वो भी हमने चेक करना चाहिए, जिससे हमें हमारा जो मतलब व्हीकल है या जो हमारे कृषि यंत्र वो खराब ना हो सके।
0: और मंजीत भाई, रंग है या उसमें जो घिसट है, और घिसट के कई बार जो चलने वाले जो औजार है ना, जैसे हैरो है,
1: हाँ जी,
0: उसमें जो है एक जगह तक दूसरी जगह पर जब हम ले जावे हैं तो उनके नीचे पहिए, कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पर लेके जाओ एरो ना उल्टी कर दे,
1: उल्टी कर दे, जी हाँ जी, हाँ जी।
0: वो पहिए चल रहे हैं रबड़ के, देखे हुआ टायर है,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो वो भी जरूरी है, न्यू नहीं कि भाई उस एरो ने तला न कर कर उसने सारे रोड न पड़ दे,
1: हाँ जी, हाँ जी, ये भी
0: वो भी खराब हो, और जो उसकी जो डिस्क है ना एरो की, वो भी खराब हो जाए, तो इसलिए थोड़ा वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: तो बरसात में भी कृषि यंत्र ने संभाल कर रखना जरूरी है, और इसके साथ साथ हमने नीचे जो लकड़ी के टुकड़े भी रखने चाहिए, और साथ में यह यंत्र नमी ना पकड़े, जमीन तो थोड़ा ऊपर रख लें और जंग भी ना लगे, जिससे हमारी मशीनरी भी ठीक रहे।
0: हाँ, क्योंकि बरसात आ जाएगी, बरसात में मशीनरी है वो दरी रह जाएगी, तो उसमें जो टायर है ना वो तले रह जाएंगे, तो थोड़ा हा उनके नीचे थोड़ा टायर अगर हम उठा देंगे तो नीचे से टायर जो है वो खराब
1: ना हो जाएंगे।
0: और इसके साथ साथ जो बिजाई और छिड़काव की जो मशीनरियाँ हैं, जैसे दाने हैं, खाद है, और जो दवाइयाँ जो हैं हम देवे हैं मशीन में, तो कई बार मशीन के भीतरे रह जाए,
1: हाँ, बार
0: नाली के अंदर,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कुप्पी ही में कई बार रह जाए, तो वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई मंजीत भाई बहुत जरूरी
1: है,
0: चाहे वो घर की साफ सफाई है, चाहे मन की साफ सफाई है, तन की साफ सफाई।

0: सही है। और रही बात पशु पसेरे की, तो भाई डंगर डोर के दोर भी साफ सफाई रखनी जरूरी है।
1: जरूरी है जी।
0: तो इस तरह से हमने जो अपना जो कृषि यंत्र है उसकी देखभाल रखनी बहुत जरूरी है।
1: जरूरी है जी।
0: ये बात आ जाए कि भाई जो हम कई बार कृषि के अंदर जो बागवानी है उसके अंदर हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा
1: हाँ जी, हाँ
0: कि
1: जी,
0: जब हम नए पौधे लगा हुए हैं तो उन पौधों के अंदर जो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बहुत ही अपना महत्व है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब पेड़े लेने जावे हैं नर्सरी में से,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो उसमें जो
1: पेडल,
0: पॉलिथीन,
1: हाँ
0: हाँ जो
1: पेडल लग
0: पॉलिथीन
1: रहे
0: है
1: हो
0: पेड़ा
1: पोल्टिन
0: लग रहा
1: में।
0: है, तो उस पेड़े को हमने पॉलिथीन में इसलिए उगाया है कि हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं।
1: ले जा सके। हाँ जी,
0: ठीक, नहीं तो क्या होगा कि वो जो पेड़ा है उसने अगर हम हाथ तक पाड़ांगे या फिर उसने मिट्टी से, कई बार मिट्टी जो है पेड़े के दौरों हुआ है तो वो टूट के नीचे पड़ जाए, जिससे कि जो पेड़े की जो मुलायम जड़ें हैं
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कोमल जड़ें हैं वो टूट कर पड़ जाएंगी, और जब टूट कर पड़ जाएंगी तो पेड़ा चल लगा के ऊपर
1: चल, उसकी खुराक खत्म हो
0: खुराक खत्म हो
1: जाएगी।
0: जाएगी। तो इसी तरीके जो हम कई बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्लास्टिक की मल्च जो है उसका बागवानी के अंदर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो मल्चिंग है इससे जो है फलों का जो व्यापार है उसके अंदर करीब करीब 2% की भागीदारी है, और इसका जो मुख्य कारण है यानी कि हमारे जो फल है उनकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाए, और इस कारण से कई बार हमने नुकसान ठाना पड़ जाए जिन भाइयों द्वारा बाग है, चाहे वो माल्टा लगा रखा है, चाहे उन्हें नींबू लगा रखा है और चीकू लगा रखा है। तो इसमें जो है हमने मिट्टी की जो संरक्षण है, मिट्टी का जो बचाव है वो रखना बहुत ज़रूरी है, और भाई मिट्टी का जो तापमान है वो सामान्य बना रहे, क्योंकि आज ये देखना रहे हो कि गर्मी जो है मंजीत भाई
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और दो तरह की जो मल्चिंग है, एक तो कुदरती है प्राकृतिक है, एक वो
1: एक
0: है
1: कृत्रिम,
0: कृत्रिम,
1: खुद की
0: हाँ
1: बनाई हुई।
0: खुद की बनाई हुई।
1: तो कृषि में जो उत्पादन बढ़ाने और लागत को कम करने खातर किसान पिछले काफी सालों से मेहनत करने लग रहे हैं, और मिट्टी की नमी का भी संरक्षण देखने लग रहे हैं, जिसमें जैसे सूखे पत्ते हो गए, धान की पराल या पुआल होगी, सूखे गन्ने के पत्ते, और कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट जो गोबर के द्वारा तैयार किया गया है, उसका भी हमने प्रयोग करना चाहिए।
0: और प्लास्टिक के जो मल्चिंग है उससे नमी तो बनेगी बनेगी, और इससे लगभग जो है 40 से 60% पानी की भी बचत होगी मंजीत भाई।
1: और हाँ, यह खरपतवार ने भी सरलता, मतलब आसान बनावे और कंट्रोल में भी रखा है, और भूमि को ठोस बनाने में भी रोका है, और मृदा के तापमान को भी नियंत्रण करे,
0: यानी
1: मतलब आग नियंत्रण दें दी।
0: मिट्टी जो है उसके तापमान को भी ये नियंत्रित कर ले हैं, और सिंचाई में जो पोषक तत्व हैं उनका भी प्रबंधन जो है हम कर सके हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक मल्च है उसके बाद यानी कि खेत में सिंचाई का जो सबसे बढ़िया साधन के है कि ड्रिप सिंचाई
1: हाँ, ड्रिप सिंचाई टपका टपका के लिए।
0: टपके के अनुसार, और टपका जो सिंचाई है वो खेत के अंदर कृषि के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप पानी जो अगर हमने खेत में दे भी दिया तो वो बहुत जल्दी भाप बन के
1: बाप
0: ऊपर
1: बनकर उठ
0: जाएगा
1: जाए जी।
0: क्योंकि
1: हाँ, उठ
0: गर्मी
1: जाए,
0: ज़्यादा
1: हाँ,
0: पड़ रही
1: गर्मी
0: है,
1: ज्यादा जी।
0: इसलिए जो बूंद बूंद करके, क्योंकि पानी हमने पौधे की जड़ तक अगर चला जाएगा तो उससे ही पौधा जो है अपनी खुराक भी लेगा और उसके अंदर अपनी बढ़वार भी लेगा।
1: बढ़वार भी होगी जी। हाँ,
0: और इसके साथ साथ फुहारे हैं, आपने देखा होगा बाग में पार्का में वे लगे रहे हैं, तो वो स्प्रिल
1: चारों
0: करता
1: तरफ,
0: रहे
1: हाँ
0: चारों तरफ ना घूमता रहे भाई, ताकि एक जगह पानी इकट्ठा
1: ना हो
0: ना
1: जी,
0: हो।
1: और
0: और बूंद बूंद सिंचाई में
1: लेटरल पाइप का को फिल्म या मल्च के नीचे रखा जाता है, जो सिंचाई के उर्वरीकरण बिना किसी समस्या के सुविधाकरण हो जाता है। ये हमने

0: सुविधा मिलती है उसकी, जब बूंद बूंद करेंगे तो पेड़ के नीचे जब पानी जाओगा तो उसकी भी हमने मतलब गुणवत्ता मिलेगी और फुहारे के द्वारा भी हम सिंचाई करना संभव है।
1: और मंजीत भाई, अगर हम बात करें जो प्लास्टिक मल्च है, जो फिल्म है, उस ये नहीं फिल्म जो हम देखा फोन, वो फिल्म नहीं,
0: वो नहीं,
1: हाँ जो प्लास्टिक की फिल्म थी वो है, तो वो मौसमी जो फसल है, जैसे 3 से 6 महीने वाली जो फसल है, उनमें हम जैसे टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और जो एक साल के लिए है, यानी कि जो ज़्यादा फसल देने वाले हैं, उनमें जैसे पपीता है, केला है, अनानास है, गुलाउदी है, आम है, और नींबू वर्गीय जो फसलें हैं, या फिर उसमें अगर हम बात करें आंवला है, अमरूद है, और फूलों में अगर बात करें तो गुलाब। आप देख रहे हो कि हमारे देश के जो फूल हैं वो दूसरे देश तक भी जा रहे हैं।
0: हाँ जी,
1: टूलिप है, गुलाब है, और गुलाब में भी कई तरह की जो आपने देखा होगा कि वैरायटी है,
0: रेड रोज है,
1: हाँ। धोला फूल है, काला फूल है, लाल फूल है, फूल भी
0: बहुत सारे हैं, एक ही उसमें बहुत सारे वैरायटी है।
1: और ब्याह के टाइम में आपने देखा होगा वो एक फूल जो है वो लगभग जो है 50 से 70 रुपए तक का, 80 रुपए तक का भी वो मिला है। और जो हो जाए फिर वो कौन सा दिन का है, वैलेंटाइन डे,
0: वैलेंटाइन डे हो जी, या फिर ब्याह शादी का,
1: ब्याह शादी का मौसम हो तो उसमें
0: बिल्कुल मौज बन जाए जी,
1: मौज बन जाए
0: उस दिन तो बिल्कुल। हाँ, वैलेंटाइन डे वाला दिन तो बिल्कुल जी मौज बन जाए फूल वाले की।
1: तो इसीलिए जो प्लास्टिक की जो मल्च है वो बागवानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो सुरक्षित रहे है, और उससे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी
0: ले सकते हैं जी।
1: और इसके साथ साथ बात करें जो कृषि के अंदर अपना रासायनिक खादों के साथ साथ हम अगर दूसरी खाद है, जैसे केचुए की खाद है, या फिर और दूसरी
0: गोबर की खाद है, जैविक खाद है,
1: जैविक खाद है, उनका भी अगर हम प्रयोग करें, तो हम अपनी जो पारंपरिक जो खेती है, यानी कि जो बाप दादा से करते आ रहे जो खेती है, उस फसल में और आज की फसल में दिन रात का फर्क है। और अगर आप देखो कि जो फर्क क्या है कि आज वो बीमारियां आ गई हैं हमारे हिस्से में, इंसान के हिस्से में, जो कभी हमारे बुजुर्गों में नहीं पाई जाएगा,
0: पाई जाती थी। हाँ जी,
1: जैसे शुगर है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की ये जो बीमारियां हैं ये देखने को हर दूसरे घर के अंदर, एक घर के अंदर तो कई जो बच्चे से लेकर बड़े तक सब गए शुगर,
0: सब कई हो रही। हाँ जी,
1: बोले अरे चीनी छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, डिमका छोड़ दो, लेकिन शुगर का इलाज जो है वो खुद अपने हाथ में, सैर करनी है, बाजा दौड़ी करनी है, खेत क्यार में जाना है, पहले पैदल चल लग रहे थे,
0: आजकल तो सर अड्डे जाने खातिर भी
1: मोटरसाइकिल ठाव है। तो इस तरह से हमने रासायनिक खादों का भी थोड़ा हाथ डांट का प्रयोग। और मंजीत भाई, इव गड़ी भी नू कह रही है कि चतुर भाई टाइम
0: लिया हो,
1: कार्यक्रम का खत्म हो लिया,
0: खत्म हो लिया,
1: और भाइयों से ले फिर
0: इजाजत
1: इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम,
0: राम राम जी।

अभी आप सुन रहे थे हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुननीय सारे बाण भाइया ने चतुर भाई की ओरत है
1: राम राम।
0: और मंजीत भाई, आज कार्यक्रम में हम बातचीत तो करेंगे बहुत सारी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: क्यों? गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है और आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर अपना वो गिलास ले,
1: मीठा पानी पे निर्जला
0: उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ जल प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डट के
1: जी।
0: पहले भैया सुनवा दें एक संदेश। और
1: संदेश,
0: ये संदेश जो है यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक

0: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
1: तो मंजीत भाई,
2: ये तो सुने अपन एक संदेश।
1: अरे पहले एक राग नहीं सुन ला?
2: हाँ,
1: भाई आने भी सुनवा दे,
2: सुनवा दे जी।
1: क्यों भाई, भी बाट देखन ला रहे
2: बाट देखन।
1: और ये राग नहीं हमने ये सुनवा रहे हैं आपको, वे विजय कुमार गतवालिया और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

वो चित्रकार चतुराई करके चित्र बना दे न्यारा भारत के बलवानों का वो।

मैं घोड़ा एक सजा दे, लव कुश के हाथा में पट्टा घोड़े का पकड़ा दे, शत्रुघ्न और चंद्र के तू आते।

सेना की तैयारी, घोड़े के असवार बना और हाथी की अंबारी। देखे महाराणा परताप दिखा दे, घोड़े पर असवारी, योद्धाओं की देख दिखा, युद्ध करने

क्षेत्र में भीष्म जी को चढ़ता होया दिखा दे। अर्जुन आगे कर्ण बलि को अड़ता होया दिखा दे। फिर गदा हाथ में लिए भीम को बढ़ता होया दिखा दे। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को लड़ता

0: तो मंजीत भाई,
1: हाँ जी,
0: ये तो सुनी हमने विजय कुमार और साथियों की आवाज में या रागनी, और अब एक संदेश सुन लिया।
2: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
3: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
2: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
3: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
3: 8708903436।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर?
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है,

0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: मंजीत भाई,
2: हाँ जी,
1: ओ आप बात कर रहे थे पानी के बारे में, भाई मीठा पानी पिया, वो क्या निर्जला एकादशी के बारे में?
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो बताओ कि निर्जला एकादशी जो है वो क्यों मनाई जाए, किस लिए मनाई जाए?
2: निर्जला एकादशी जो सनातन धर्म है ना, ये इसका एक प्रमुख त्यौहार है और ये जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष के एकादशी वाला दिन मनाई जाता है।
1: हाँ,
2: मतलब चंदन में,
1: चंदन
2: अंधेर में नहीं, चंदन की एकादशी ने मनाया जाता है। और जो ये भगवान श्री विष्णु है ना, उनको समर्पित है ये त्यौहार। इस दिन है ना लुगाई आदमी दोनों व्रत भी रख सके इस दिन का। हाँ, और इसकी जो महिमा है ना वो शास्त्रों में बहुत पुराना टाइम तक है, और जो इसके साधक हैं, जो श्रद्धात्मक श्रद्धालु हैं, वो इसने इसके लिए बहुत सारे नियम बना रखे हैं। और इसने निर्जला एकादशी ने जी भीम श्रेणी एकादशी भी कहा जाए।
1: अच्छा, भीम श्रेणी।
2: हाँ, ये जो भीम बलि थे ना अपने, उनकी वजह से इसको मनाया जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: हाँ, और पुराणिक कथाओं में इसका नाम भी है भैया भीम श्रेणी। और महर्षि वेद व्यास ने इसकी शुरुआत करी थी, जो कि एकादशी के जो फल होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए।
1: और मंजीत भाई, यो जो निर्जल है,
2: हाँ जी,
1: इसका मतलब क्या है?
2: इसका मतलब बिना जल के, भाई कोई भी साधक, मतलब कोई भी जो उसका मतलब सेवक है या जो भगत है, वो बिना पानी के ना रहे।
1: अच्छा।
2: खासकर तो गर्मी में उसने ये चलाई थी कि भाई, और बिना अन्न के, देखिए इसमें अन्न भी है, बिना अन्न के और बिना उसके मतलब नहीं रहना चाहिए ये जेठ के महीने में, क्योंकि उस टाइम पर अन्न का भी टोटा हो जाए है और पानी भी नीचे चला जाए इस वजह से। तो ये कब है भाई? ये है वैदिक पंचांग के अनुसार, यह है इस साल 25 जून ने और सांझ 24 जून ने 6:12 तक शुरू हो जाएगी, या और 25 जून ने रात्रि के 8:09 तेरह होगी
1: 25 जून तक।
2: हाँ,
1: कि ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई 25 जून तक जो है, और इसमें जब पानी प्यावे हैं,
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: उसका कोई फल भी मिले है?
2: हाँ, इसका फल तो यही है कि भाई हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं, और जो राह चलते बेचारे राहगीर हैं, कोई 100 किलोमीटर तक चल रहा है, कोई 50 किलोमीटर तक चल रहा है मोटरसाइकिल पे, कोई बस में चल रहा है, तो उसने हम एक या पानी पिला के एक उसकी सेवा कर लें, ताकि, और हमने कदम भी खाली पानी नहीं पिलाना चाहिए।
1: अच्छा।
2: उसके अंदर हमने चीनी या कुछ डाल के देना चाहिए, ताकि वो एकदम, क्या पता वो 3 घंटे से चल रहा है या 4 घंटे से चल रहा है, अगर हम उसमें एकदम पानी पिलाते हैं ना तो उसको फिर दिक्कत हो जाए, पेट में भी हो सकती। और ये प्रातःकाल स्नान का टाइम पर, और जब गंगा जल का मिश्रित जो जल हो ना, उसमें हमने भी स्नान करना चाहिए। इस दिन हमें हमेशा पीले और धोले कुर्ते पहनने चाहिए।
1: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बता भी।
2: हाँ हाँ।
1: पीले कुर्ता और भाई धोला कुर्ता, लेकिन कई तो रंग बिरंगे पैर कह रहे अपने वो शुरू हो जाए।
2: हाँ, और इसमें एक चीज और है चतुर भाई, इसमें जो पीला वस्त्र बिछा कर जब हम उसकी पूजा करेंगे ना,
1: अच्छा,
2: तो उस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता उस दिन, जब हम इस पर मतलब व्रत करके, जब हम व्रत खोला ना रहते हैं, तो उसका टाइम पर हमने विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान ना, लक्ष्मी जो माता है उसका वास आता है।
1: यानी कि पुरानी की जो कथाएं हैं उनके अनुसार ये है। और इस दिन मंजीत भाई कुछ दान भी करे हैं लोग बाग।
2: हाँ हाँ, और इस दिन हमने दान भी करना चाहिए, और भगवान जो है वो केसरयुक्त जैसे खीर फल और मिष्ठान का भोग लगा का हमने आरती करनी चाहिए।
1: यानी कि मिठाई और खीर दोनों अगर नाम ले दिया तो इवनो सोच लो कई का पेट में भी
2: गुड़गुड़ सी होगी, गुड़गुड़ सी होगी, हाँ कीड़े से उठे गए मिठाई खाने के। ठीक है जी,
1: आप कभी उठ रहे होंगे।
2: ठीक है जी, ठीक।
1: तो ये तो रही निर्जला एकादशी के बारे में, और अब एक संदेश सुनते।
2: हाँ जी, हाँ जी, संदेश जी।
3: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
4: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
4: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर कुरुक्षेत्र, 8708903436।
5: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM।

0: विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, आईटी, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIELM यूनिवर्सिटी कैथल।
2: तो मंजीत भाई, ये तो सुने हमने संदेश, और अब देखो खेत में जब हम काम करें, पानी तो जरूर चाहिए,
3: पानी तो जरूर चाहिए,
2: और पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती
3: है जी।
2: यानी कि उसने बेरा लग गया है, जो 5 किलोमीटर चाल के रेगिस्तान में आपने देखा होगा, 5 किलोमीटर चाल
3: के पानी लिया जी,
2: पानी लिया और दो गड़
3: सिर पर हो,
2: और ऊपर तक गर्मी हो, जेठ की गर्मी हो, और नीचे तभी जो
3: तप दो जी पैर। हाँ।
2: तो इवन देख लो क्या हालत होगी,
3: क्या हालत होगी जी।
2: तो इसलिए न्यू नहीं कि भाई हमने टूंटी चल रही है तो टूंटी नहीं अपना
3: चल रही है तो चले रही है, बंद करने का भी हमारा काम है।
2: वो चाहे वो गाड़ में टूंटी चल रही है, उसके ऊपर कुछ है नहीं मारा के, वो क्या कर रहे हैं कि भाई थारा के भाई कुछ जावे है। हाँ। पानी चल रहा था, चलने दो, लेकिन नहीं
3: नहीं
2: गलत है, क्योंकि हर बूंद जो पानी है उसकी कीमत है,
3: कीमत है जी,
2: और कीमत ना वही इंसान जानेगा जिसने
3: पानी की कमी देखी,
2: पानी की कमी देखी। तो इसलिए और खेत में भी यही बात है, अगर हम खाल चला रहे हैं और पूरा खुला चल रहा है, तो वही बात आ गई फिर कि हर बूंद जो है वो पौधे के लिए जरूरी भी है और कीमती भी,
3: कीमती भी है जी,
2: जिससे कि पौधे को खुराक मिलेगी और उसी गुणवत्ता के हिसाब से वो फल भी देगा,
3: फल भी देगा जी।
2: ठीक। और इसीलिए जो है हम जो कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके बारे में कुछ आप बताओगे?
3: हाँ जी, हाँ जी, जरूर बताएंगे जी। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत हम पहले तो प्राथमिक उद्देश्य जो हमारे सबसे पहले हैं वो, और फिर क्षेत्रीय स्तर पर मतलब हम अपना गांव गुआंड गए उसमें सिंचाई का प्रणाली का भी हम बेरा दें लोगों ने कि भाई हमने इस तरह की सिंचाई करनी है, और उसको ऊपर हमने आकर्षित करना और उसको ऊपर हमने निवेश भी करना, जिस तरह मतलब टूल पंप या कुछ छोटी मतलब वो अपने यंत्र ला सका, और देश में कृषि योग्य भूमि का भी विस्तार करना जरूरी है, और खेत में पानी की बर्बादी कम करने खातर हमने अधिक से अधिक पानी की उपयोगिता को बढ़ाना पड़ेगा। इब कई बार जैसे हम देखा कि खाल के खाल गांव में चल रहे हैं, और जैसे आप बता रहे चतुर भाई जी टूंटी बंद नहीं कर दे लोग, या फिर खेतों में पानी के पानी चले जोड़ का जोड़ भर जाए, हाँ तो हमने उस पर भी हमने पूरा कंट्रोल करना है, और पानी का पुनः इस्तेमाल करना है। दोबारा हमने ऐसा देखना है कि हम कोई भी पानी है उस टाइम दोबारा इस्तेमाल कर सका।
2: हाँ।
3: मतलब आजकल ये चला रखे है
2: मंजीत भाई, आजकल ना ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि भाई जो पानी है पहले हम जोड़ होया करते, जोड़ में हम अपना डांगरा ना बिनवा लिया करें थे, लेकिन आजकल जोड़ में हम क्यों नहीं, क्योंकि जो केमिकल है वो इतने ज्यादा हो गए, पहले साबुन नहीं लगाया करें थे, मुल्तानी मट्टी हुई और चिकनी मट्टी हुई उस ते ना लिया करें थे,
3: ना लिया करते
2: हैं, बाल भी उस ते दो लिया करें थे, और जो इन दिनों में आप देखो गांव लिकड़ाया गुमड़ी ही लिकड़ाया। हाँ, थी। हाँ। उस पर अपना मुल्तानी मट्टी ठाकर बंदर है बने अंडे जाया करें थे गांव है। तो आज वो समस्या आ गई कि सर्फ चाहे वो साबुन है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, पहले रीठा होया करता, रीठे ते जो है कपड़े भी धोया करें थे और बर्तन भी धो लिया
3: करें,
2: और जो घर के पीतल के बर्तन होया करते नाम राख तो मांझ लिया,
3: चूल्हे के राख तो मांझ लिया करते। हाँ जी,
2: लेकिन आज वही बात है,
3: चूल्हा ही नहीं रह रहा, राख भी नहीं रह रही,
2: तो फिर राख तो है चूल्हा भी है, लेकिन जिन शौक है
3: वो तो आज भी कर रहे,
2: वो तो आज भी देखो रबड़ी भी है, चूल्हा भी है, और वही गोस्से भी हैं, हैं सब कुछ है, लेकिन परंपरागत जो है आजकल उसी पे ही आने
3: शुरू हो गए जो जहाँ पर हम,
2: क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हम पक्के मकान की ईंट उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो है गोबर की ईंट बना कर और उससे मकान जो है लिपाई करके, और पहले ऐसे ही होया करा था, गाय का गोबर ले आया करे थे।

0: कर रहे थे, और जो है चाहे मारा हवन हो रहा है, चाहे मारा कोई दिवाली है,
1: होली
0: होली
1: है,
0: है,
1: कुछ
0: उसने अपना
1: तीज
0: दिए
1: त्योहार कुछ भी
0: तीज
1: है,
0: त्योहार है, उस पर चित्रकारी करके बढ़िया बनाया
1: बढ़िया
0: करते
1: बना दिया कर दी,
0: हैं।
1: और बड़ी खुशबू आया कर दी उस
0: बहुत
1: मिट्टी की,
0: बहुत बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तो वो खुशबू नहीं। और एक और चतुर भाई, हमने जो पानी है ना, सिंचाई का पानी है, वो कम से कम भी हर कोने तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि भाई मान लीजिए चतुर भाई आपकी बारी है, तब तो मैंने सोचा कि मनजीत ने आज तो पड़ा रहने दे लिया उसका मार कसी, और महेश ने के नाम सारा पानी ने माज अपने कब्जम कर लूँ, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। जिस भाई का जिस टाइम पर वार अपना वारी का हिसाब से भी अपने कम से कम पानी का यूज करना चाहिए। और दूसरा है कि पानी के कुशल उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने वितरण और उपयुक्त तकनीक का भी प्रयोग करना चाहिए। जब हम उसका उपयोग नहीं करेंगे ना, अच्छी तकनीक का और अच्छा भाव होगा और अच्छा वितरण का, जब तक
0: मंजीत
1: हम
0: भाई
1: कामयाब नहीं हो सकते।
0: सबसे बड़ी बात है भाईचारा।
1: भाईचारा,
0: अगर हमने भाईचारा सही नहीं मार रखा है ना, तो हमने किसी तरह की कमी नहीं आओगी,
1: नहीं आओगी।
0: चाहे वो गांव है, चाहे बगड़ है, चाहे गुआंड है, चाहे फिर अपना शहर है, चाहे अपना देश है।
1: देश है,
0: ठीक, तो अगर हम इस तरह से अपना जो भाईचारा निभाओगे तो ठीक। ये भाईचारे की बात आ गई तो कुछ मनोरंजन की भी
1: हाँ
0: बात
1: जरूरी
0: कर
1: होनी चाहिए,
0: लो।
1: अपने भाई बाट देखने लग रहे हैं, उनका
0: बिल्कुल,
1: तर
0: बटन
1: भी
0: देख लेना।
1: मनोरंजन
0: तो
1: जरूरी है।
0: फिर सुनते हैं एक हरियाणवी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।
1: ठीक है जी, ठीक।

0: और भैया हरियाणवी फिल्म के इस गीत के गिले जो है आज का ग्राम संसार कार्यक्रम होया समाप्त। चतुरु भाई ने और
1: मंजीत भाई ने दो राम राम। आज की
0: हमने कार्यक्रम आज ग्राम संसार यहीं तक।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिष्मा की ओर से स्वागत है आप सभी का। और ये विशेष कार्यक्रम जो हम अपनी सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों, अधिकारियों और उनके परिवारों का के लिए सजा कर लेकर आते हैं, जिसमें उनके साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहता है और सम्मान है आप सभी का। और आपके मनोरंजन के लिए कुछ जो बंदोबस्त आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कर पाता है, उसी के तहत ये कार्यक्रम है जय जवान। और सुनते हैं जिसमें कुछ चुनिंदा मधुर गीत जो आपको, आपके अपनों की यादों को भी ताज़ा करेंगे। और आप जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, वहाँ आप सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और कार्यक्रम में आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले वो है फिल्म हमराज से आवाज़ महेंद्र कपूर की, साहिर की शब्द रचना है और संगीत है रवि का।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखे, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
7: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
8: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
9: और ये कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है मिस्टर नटवरलाल, आनंद बख्शी की शब्द रचना है और राजेश रोशन का संगीत।

श्रोता आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ही गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेश रोशन का संगीत और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

आप सुन रहे हैं उषा मंगेशकर मोहम्मद रफी को, फिल्म है मिस्टर नटवरलाल, संगीत राजेश रोशन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और आइए सुनते हैं कुछ गैर फिल्मी रचनाएं कार्यक्रम गुलदस्ता के अंतर्गत।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT

श्रोताओं, इसी प्रस्तुति के साथ आज के गुलदस्ता कार्यक्रम को समेटने की इजाज़त दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत ज्योतिष्मा के साथ और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का ये खास कार्यक्रम जिसमें कुछ कुछ बातें आपसे करते हैं और कुछ आपको गीत भी सुनवाते हैं। तो संगीतमय सफर पर हम तैयार हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है वो समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस महान अभिनेता को जिनकी दमदार आवाज़, जिनकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और बेमिसाल अभिनय ने हर किरदार को यादगार बना दिया। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं अभिनेता अमरीश पुरी की जयंती। खलनायक हो, सख्त पिता हो या संवेदनशील चरित्र, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका प्रसिद्ध संवाद मोगैम्बो खुश हुआ आज भी उतना ही लोकप्रिय है, लेकिन असल जीवन में वे अनुशासन, सादगी और भारतीय संस्कारों के प्रतीक रहे। तो उनके अभिनय सफर पर चलते हैं, याद करते हुए शुरुआत करते हैं फिल्म परदेश के इस गीत से जो हर भारतीय के हृदय में देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। आई लव माई इंडिया।

तो दोस्तों आज आपसे बात कर रहे हैं अमरीश पुरी के बारे में, भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता जिनकी की आज जयंती है। 22 जून 1932 को

पंजाब के नवा शहर में जन्मे अमरीश पुरी का फिल्मी सफर दोस्तों आसान नहीं रहा। शुरुआती दौर में उन्हें अनेकों असफलताओं का सामना करना पड़ा और कुछ समय तक उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन रंगमंच से जुड़कर उन्होंने अपने अभिनय प्रतिभा को निखारा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रसिद्ध अभिनेता मदन पुरी और चमन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी, उनकी पत्नी उर्मिला देवीकर पुरी थी तथा उनके दो बच्चे रावजीव और नम्रता हैं। पर्दे पर भले ही वे दमदार खलनायक के रूप में नजर आए हों, लेकिन निजी जीवन में वे बेहद सरल, अनुशासित और परिवार से जुड़े हुए इंसान थे और यही कारण है कि उनके सहकर्मी उनका बेहद सम्मान करते थे। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो कि उनकी ही फिल्म त्रिदेव का एक सदाबहार गीत है और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं इस दिलकश नगमे को।

और दोस्तों बात कर रहे हैं हम आज अमरीश पुरी की। फिल्मों में अमरीश पुरी ने जितने प्रभावशाली खलनायक का किरदार निभाया, उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने संवेदनशील और सशक्त चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने चौधरी बलदेव सिंह का किरदार निभाया, एक ऐसा पिता जो अपनी परंपराओं और संस्कारों से गहराई से जुड़ा है, लेकिन अंततः अपनी बेटी की खुशियों को सबसे ऊपर रखते हैं। और अंतिम दृश्य जो फिल्म का है, उसमें जो एक संवाद, जी हाँ, जा सिमरन जीले अपनी जिंदगी, सिनेमा के इतिहास के सबसे भावुक और यादगार संवादों में शामिल हो चुका है। यही संवाद एक कठोर पिता के भीतर छिपे स्नेह और अपने पन को भी उजागर करता है। तो आइए अब इसी कालजयी फिल्म का एक बहुत ही मीठा मधुर गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम ठीक लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और साल 1987 का जिक्र करें जब रिलीज हुई थी उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया। अमरीश पुरी को एक ऐसी पहचान दी इस फिल्म ने जो समय के साथ और भी अमर होती चली गई। इस फिल्म में उन्होंने मोगाम्बो का किरदार निभाया, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और यादगार खलनायकों में गिना जाता है। उनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और अनोखा अंदाज दर्शकों के मन पर ऐसी छाप छोड़ गया कि आज भी उनका संवाद मोगाम्बो खुश हुआ बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की जबान पर सुनाई देता है। और ये केवल एक संवाद नहीं बल्कि भारतीय फिल्म इतिहास का एक अमिट अध्याय बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि पर्दे पर जितने कठोर और भयावह वे दिखाई देते थे, वास्तविक जितने जीवन में वे उतने ही विनम्र और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। और यही उनकी अभिनय प्रतिभा की सबसे बड़ी पहचान थी कि जिस किरदार में जाते थे बिल्कुल उसी में ढल जाते थे। और अब सुनते हैं उनकी इसी यादगार फिल्म का एक गीत।

जी दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र आज आपके साथ कर रहे हैं जिनका कि कोई एक सीमित दायरा नहीं था। जो किरदार मिला उसको उन्होंने जीवंत कर दिया। और भाषा की बात करें तो हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मूला राम की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। और वहीं अभिनय के साथ साथ वे रंगमंच से गहराई से जुड़े रहे और अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। कहा जाता है कि वे हमेशा समय से पहले शूटिंग सेट पर पहुंचते थे और अपने हर दृश्य की पूरी तैयारी करते थे। लगभग 450 से अधिक फिल्मों में निभाए गए उनके विविध किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। और यही कारण है कि अमरीश पुरी केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक सशक्त संस्थान माने जाते हैं। तो अब सुनते हैं उनकी फिल्म गदर, एक प्रेम कथा का जोशीला और सदाबहार गीत

0: और दोस्तों हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम गीतों को पूरा नहीं बजा पा रहे हैं। दरअसल एक ऐसी शख्सियत का जिक्र आज हम आपके साथ कर रहे हैं कि जिनके लिए ये 45 मिनट का प्रोग्राम जो है वो बेहद ही छोटा है। तो अमरीश पुरी जो है वो भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में उनका नाम शुमार है जिन्होंने हर किरदार को अपनी अदाकारी से जीवंत बना दिया। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC में नौकरी भी की। अभिनय का जुनून उन्हें हर शाम रंगमंच तक ले जाता था और उनके रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो किसी भी रंगकर्मी के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और फिल्मों में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार फिल्म मेरी जंग के लिए 1985 और घातक के लिए 1996 के लिए दिया गया। और इसके अलावा विरासत, गर्देश, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, ताल, गदर एक प्रेम कथा, नायक, मिस्टर इंडिया और हॉलीवुड फिल्म इंडियन जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। और एक और रोचक बात यह कि वे सेट पर सबसे पहले पहुंचने वाले कलाकार तो माने ही जाते थे और अपने संवाद की भी पूरी तैयारी के साथ याद रखते थे। ये बात हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं और मानते थे कि अभिनेता की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन और समर्पण है। यही कारण है कि आज उनके जाने के वर्षों बाद भी अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और यादगार अभिनेताओं में शुमार हैं। अब सुनते हैं उनकी फिल्म का ये अगला गीत।
1: Yeah.

कुछ कलाकार दोस्तों अपने अभिनय से मनोरंजन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ एक मिसाल बन जाते हैं, और अमरीश पुरी उन्हीं विरले कलाकारों में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे जिस फिल्म में होते थे वहां उनका किरदार केवल कहानी का हिस्सा नहीं रहता था, बल्कि कहानी की पहचान बन जाता था। और यही वजह है कि कई बार दर्शकों को फिल्म का नाम भले याद रहे ना रहे, लेकिन उनका निभाया हुआ किरदार बरसों तक याद रहता है। अमरीश पुरी को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और वे नए कलाकारों का उत्साह बढ़ाने में भी कभी पीछे नहीं रहते थे। मानते थे वे कि एक कलाकार को हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, और शायद यही सीखने की ललक उन्हें हर दौर में प्रासंगिक बनाए रखती रही। और आज भी जब भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली कलाकारों की चर्चा होती है तो उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी जयंती पर आज हम उन्हें सादर नमन करते हैं और उनकी यादों को प्रणाम करते हुए अब आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बस इसी के साथ कि कुछ हम उनके किरदार से सीख पाएं, कुछ जो बातें आज हमने साझा की हैं कि जो भी उनका किरदार रहता था उसमें तल्लीन हो जाना, यानी अपने काम में बिल्कुल आप पूरा 100% देने की कोशिश कीजिए, तभी शायद हर कोई तो अमरीश पुरी नहीं बन सकता, लेकिन जो भी किरदार उन्हें दिया गया, अमिट छाप उन्होंने छोड़ी, और शायद हम लोगों को जो किरदार हमारी जगह पर मिले हैं उस जगह पर हमें भी अपना पूरा निभाना चाहिए, जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसके लिए, और शुक्रगुजार ज़रूर होना चाहिए ऊपर वाले का। तो क्षमता सभी के अंदर है, और जो भूमिका जिसको मिली है उसको वो प्रभावशाली किस तरह से बना पाए, बस यही बात विचार में लानी है। और अब चलते हैं कार्यक्रम में ये गीत जिसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। गीत तो बहुत सारे हैं जो उनकी फिल्मों के हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम है तो चुनिंदा गीत ही हम आज आपके लिए लेकर आए। फिर और गीत सुनवाएंगे इनसे संबंधित या इनकी फिल्मों के फिर कभी। तो अभी सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे आप अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रेडियो की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों

0: की जांच करेगी।
1: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर वेम्बू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दास गुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट

0: प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं

0: चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

0: इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।
1: चिक्की लक चिक्की चिक्की लक चुम तर लक चिक

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप

0: सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
1: मस्ताना अल्लेना, सिर्फ एक तू है लाखों में।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बम्बई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती हैं मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। मान जाओगे तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, पल देना, सिर्फ एक तू है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम चांदनी रातें में। और हमारे पास हैं आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत ही मीठे मीठे गीतों की फरमाइश। अब देखिए, सभी फरमाइशें पूरी हों ये तो संभव है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नामों को शुमार करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आज किसका नाम सबसे पहले आता है, तो वो हैं प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी, सिया जाधव, आप सब के अलावा हैं। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। अगला मैसेज है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखे लाल वर्मा। अगला मैसेज है नाज मंजिल महसूल सीतामणि से हैं अक्रम हुसैन, बेगम इशरत अक्रम, वसीम, रुबीना वसीम, आरिज, नदीम अक्रम, शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निघत परवीन। मजनू कटीला दिल्ली से मैसेज पहुंचा है कमर बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग और आकांक्षा मलिक। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर के श्रोता हैं सैयद मसरूर, शायना हसन।

नक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। हयात करनी अररिया बिहार के श्रोता हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल अकलम और नफीसा प्रवीण। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फरमाइश पहुंची है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह की ओर से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आदर्श नगर मुरूड पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। सदर बाजार कुरावली के श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत और सोनम वर्मा। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं आप सभी हमारे श्रोता मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और साथ हैं हिना कौसर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से फरमाइश पहुंची है हरदेव मीका, बलविंदर विग, जयतेर विग और मीका विग की ओर से। गोविंद वैष्णव, मुस्कान, दिव्या, सुमन, कोमल, परिकृतिका, रमेश चंद्र डांगी का मैसेज पहुंचा है लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं गांव जगूड़ी जिले यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव परवीन, युगम, वीरेन, मरकीरत और मनराज। खुर्जा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़ के रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हैं आप सभी श्रोता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश पहुंची है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की ओर से। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना और सुलोचना भगत। अगला मैसेज है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। आइए सुनते हैं फिल्म इल्जाम का गीत अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजें, बप्पी लहरी का संगीत। हर गीत को लिखा है अनजान ने।

अगला गीत सुनते हैं हमारे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। बांडीवाला फाजिल का पंजाब से हैं क्रियांश बगड़िया, योगेश ओम, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी नलेश्वर नगर नरवेल। महाराष्ट्र से हैं पीएस नोहाकर, निर्मला विशाल नोहाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुरहेकर। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से हैं प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनंदगांव। छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। कोहका भिलाई से

मैसेज पहुंचा है उत्तम सिंह जंघेल, मॉरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल की ओर से। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। अगले ख्वाहिश अगले मैसेज को पहुंचाया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो ने। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू डुमराव। बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का मैसेज मिला। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल रॉय। अगले मैसेज में हैं हमारे पास हमारे आप सभी श्रोता। कुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश संधू, शिखा संधु, प्रतीक्षा, प्रीतिशा संधु और साथ हैं मैक्स। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायड़े, वसंत भोजने, पीएस नुहाकर और तुषार करांगले। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से मैसेज पहुंचा है विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू की ओर से। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी और तानिया नारंग। मजनू कटीरा, देखिए ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं तो अब दोबारा से नहीं किया जाएगा। दाऊद सराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वत देशमुख, सानवी, हर्षिता, आप सबका मैसेज है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। टोरोमाला जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। अगला मैसेज हमें मिला है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा की ओर से। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुकन्या, सुनैना और सविता भाकरे। कृष्णा पार्क दिल्ली से मैसेज पहुंचाया है सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना ने। अगले ख्वाहिश मंद श्रोता है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और साथ हैं बेबी गर्वी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इब्राहिम महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के हैं आप सभी श्रोता। राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह डुड्डी हैं गाँव फ्रांसी हिसार से। एकता कॉलोनी रोहतक के श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा। गंगानगर रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। करणवीर हाउस भूजो कैचिया बटिंडा पंजाब से फरमाइश पहुंचाई है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दीपेंद्र, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, तमन और अभिजोत ने। अगले ख्वाहिश मंच होता है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के श्रोता है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और साथ हैं प्रतीक चौहान। अगला मैसेज है हितेंद्र दास असम से, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और आदलपुर गुगावा से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा। ग्राम धुलापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और साथ हैं नरगिस खातून। मानपुरा साबे जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान और हबीबुर रहमान। गंज रुंडवारा उत्तर प्रदेश से है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजे शेख, दाने शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। और आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार को फिल्म है शराबी, अनजान की शब्द रचना है और बप्पी लहरी का संगीत।

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। जिला खरगोन सनावत, देखिए ये मैसेज भी पहले शामिल हो चुका है। गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। अगला मैसेज है हमारे पास रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जयसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से हैं विपिन।

स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल गम्हरिया जमशेदपुर से। अब देखिए ये ही मैसेज है, रोहन और आर्य जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मुराहू और देवंती बबूरी बाजार चंदौली से, विजय और सरोज जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से, सुंदर और सुमन जायसवाल जसपुर उत्तराखंड से हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज हुसैन और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी, महेशवाणी मलकापुर महाराष्ट्र से सुधीर, शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, नीना जी और स्वप्निल धाड़े। कलनौर से है नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। अगला मैसेज हमारे पास है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़ से और साथ हैं विनोद खड़ से। मुरादाबाद ग्राउंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। अगला मैसेज है गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और पूरा ही लोखंडे परिवार। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर बड़ी महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार। जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समाहिना, शकीला, जैस्मीन, राजिया, सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज, मोहम्मद, जावेद अंसारी। आपसे एक दरख्वास्त है कि नामों को आप थोड़ा एक इस तरीके से ना लिखें जैसा आपने लिखा है, आप लाइन वाइज उनको अलग अलग लाइंस में लिखें तो बेहतर होगा, सरलता रहेगी पढ़ने में। तो अगला मैसेज हमारे पास है झज्जर हरियाणा से है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बाता हैं। अब इन्होंने सिर्फ अपना मैसेज भेजा हुआ है, गाने की डिटेल्स हैं लेकिन नाम नहीं है तो क्या ही पढ़ेंगे हम। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वीरावारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश पहुंची है। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरुशबद सिंह राहुल। अगले मैसेज में है गोंदर करनाल से किरणपाल, बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। जवाहर नगर दुर्ग से फरमाइश मिली है आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन, बबुल कांबड़े की ओर से। सर्वजीत कौर जोसन गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं, राजस्थान से सरबजीत सिंह जोसन यानी आपका ये मैसेज है श्रीगंगानगर से, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। अगले मैसेज में हैं हमारे पास हमारे आप सभी श्रोता, ये मैसेज देखिए तीसरी बार आया है अब क्या ही, मुंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी हैं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर की फरमाइश पहुंची है। बीड़ शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाबा बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पी बी कुलथे। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाला साहेब कंगणकर, साखरबाई कंगणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और कंगणकर परिवार। अगले मैसेज में हैं हमारे पास उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, पाकुड़ झारखंड के हैं आप सभी श्रोता, बोड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन। संभाजी चौक सिड़को न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश पहुंची है सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि।

पर दिशा वाघमारे और शशांक वाघमारे। और आप सभी ने सुनना चाहा है मुकेश और शारदा की आवाजों में ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से। शैलेंद्र की शब्द रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया, साथ हैं अनुराग मोहन। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रत्ना माला सुरलकर का मैसेज मिला है। गांव कल मंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं अनूप सिंह नाथावत, धीर सिंह सोलंकी, सागर पमार और भानु प्रताप सिंह पमार और समस्त परिवार है इन्हों का। कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी आप सब हैं गांव टूकिया जिला बालोतरा राजस्थान से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना रदावली जिला मुरादाबाद से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। अगले ख्वाहिश मंद श्रोता हैं सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर। हरियाणा से हैं विजय मोहन, खार वन, मीनाक्षी, प्लोमा और ईशानी। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और अशोक ओम प्रकाश मल्होत्रा का मैसेज मिला है। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। और अगला मैसेज है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी रॉय। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय का मैसेज है। जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ है मालवाड़ी रेडियो श्रोता संघ हिंगणी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से। गांव पंचौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। कमर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की फरमाइश आई है। फाजिल का पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी, शालिनी, टिवानसी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा। फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद वाहिद रुमानी, मोहम्मद जमीर, फसी जुनैद, जुबैर, मुकरम नोमान, फुरकान, जाकिर और फाजिल। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और विनोदपुरी। और आप सभी ने सुना।

चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, मजरू सुल्तानपुरी गीतकार हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगले गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। नई बस्ती गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब गाजार रोड मंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान यासीन और शमशुल कमर राही की फरमाइश पहुंची है गंज डुंडवारा से। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। लाल माता सुदामा नगर अतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के श्रोता हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदी भाई बागरी। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका, विवी, अनिष्का और तन्मय गजबीय। शेरवानी स्कूल गंडोंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना और आलिया अंसारी की फरमाइश पहुंची। गांव हिप्पर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से हैं उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानू शेख, अबाबा शेख, सिमर और करिश्मा शेख। कृष्ण की नगरी मथुरा से हैं लुबना अंसारी, सबा गुलिस्ता रानी नंदिनी और अंजलि। जयपुर से हैं आफ्ताब अंसारी। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सबकाल, आशा, सोनिया, सायराज और विशाल सबकाल। अगले मैसेज में हैं हमारे पास दंदरेगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा। देखिए ये मैसेज पहले शामिल किया जा चुका है। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल की फरमाइश पहुंची है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी और इशिका और साथ हैं तेजल। जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू भीम, बादशाह मुलानी और पूरा ही मुलानी परिवार फुल चिंचोली पंढरपुर सोलापुर महाराष्ट्र के हैं आप सभी श्रोता। अगला मैसेज है हमारे पास मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा ताई गुंडाने, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से मैसेज भेजा है आप सभी ने। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम सदानंद, विराज, स्वीटी अंशुमन और ओवी। अगला मैसेज है राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार की ओर से। ये मैसेज भी देखिए झगुड़ी से हम पहले शामिल कर चुके हैं शुरू में ही। कैलबाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविक सिक्का। मुरादाबाद गांव धुलापुर, ये मैसेज भी पहले शामिल किया जा चुका है, माफ़ कीजिएगा हम दोबारा नहीं शामिल करेंगे। एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम हैं गुमला झारखंड से। आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग की फरमाइश पहुंची है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मोहल्ला हलवायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरानी और हिना कौसर। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बास और पूरा ही अब्बासी परिवार है गन्नौर उत्तर प्रदेश से। फारूक अली, ये सभी थे अपरकोट बुलंदशहर से और इसी में शामिल हैं कस्बा गन्नौर यूपी से। फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। अब देखिए ये मैसेज अभी पढ़कर हटर दूसरे नंबर से हमारे पास पहुंच रहा है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेध कुमार और साधना पवन पाटिल। अगला मैसेज है, बाकी मैसेज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये गीत आप सभी की फरमाइश पर है। फिल्म मदारी से

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से हैं राजेंद्र कुमार मलकीत कौर, आरती नानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज है गांव में डाकर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी और उज्जवल दास, आप सबकी फरमाइश पर है अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में। शैलेंद्र की शब्द रचना है और फिल्म का नाम है डिटेक्टिव और संगीत दिया है मुकुल रॉय ने।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सहावा रोड गंजुंडवारा से है मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही। अगला मैसेज है बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से है सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा और अनामिका शर्मा। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हम दोनों का गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, साहिर की शब्द रचना और जयदेव का संगीत।

इसी गीत को सुनना चाहता श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाव भिड़वे, श्रावण भिड़वे और अनिकेत सोनवणे ने। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र, और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और

0: विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhau Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection.